0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, ए, ए, क्या लगा रखा है ये सब? हाँ, क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

0: जा बेबी मोखड़ा दिखा जा, बिना पीते ही मुझे तो यारो चढ़ने लगी।
1: ईद की वाइब सेट हो गई है, मिर्ची पर गानों की ईदी जो मिल रही है।
2: ये गुरु।

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 89.6 89.6 मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मनाओ ईद का जश्न गानों की ईदी के संग ओनली ऑन मिर्ची।
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना।

0: जा बेबी मुखड़ा दिखा जा, बिना पीते ही मुझे तो यारो चढ़ने लगी।
1: ईद की वाइब सेट हो गई है, मिर्ची पर गानों की ईदी जो मिल रही है।
2: ये। गुरु।

0: तेरे काले सूट पहनते बन ठन आई बनी मित्रा दी जानते।
1: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: वेल मिर्ची के सभी लिस्नर्स को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बस यही दुआ है कि आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आए एंड आपकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं वो ऊपर वाला जरूर पूरी करें, आपकी हर एक दुआएं कबूल हो। एंड अगर आपकी जिंदगी में कुछ आए तो वो है बहुत सारी रौनक एंड साथ ही खूब सारी मिठाइयां। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, एंजॉय
1: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: आ गए ना सब पार्टी में, अब खींच रहे फोटो किससे करके।

0: की पार्टी आपकी तरफ से और सेलिब्रेशन खास बनाने के लिए दानों की ईदी मिर्ची की तरफ से।
1: Oh, no!

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो
3: मैडम, डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
2: हेलो, डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
3: एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
2: हेलो,
3: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए मैडम, डिस्टरबेंस अभी आ रही है।
2: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे?
3: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ, आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है, यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके, अभी भी आ रही है?
2: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
3: हैं मोबाइल पे
2: और क्या,
3: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
2: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
3: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
2: आपको बताना चाहिए था ना
3: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यार खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टरबेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
2: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते हैं डिस्टरबेंस आ रही है, दिमाग खराब?
3: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
2: आपका दिमाग खराब,
3: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है, पहले डिसाइड करिए।
2: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
3: नवेद लिखिए, नवेद
2: आ रही है।
4: पायल, में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, डिस्टरबेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा, मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोड़ो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओलियन मिर्ची इट्स हॉट।
1: देखो कतर का कोना कोना आज तो बस एक ही बात कह रहा है कि आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, ईद अल अधा बहुत बहुत मुबारक। जिंदगी में खुशियां तो आएंगी, साथ ही घर में शीर कोरमा भी आएगा। इतना ही कहना है कि दोस्त यारों के साथ आज के दिन को खूब अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें, परिवारजन के साथ बहुत सारा वक्त स्पेंड करें। इसके अलावा अगर दिल करे क्या ही करें, कहां ही जाएं, तो बस सारे अपडेट्स के लिए टिक्के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची इट्स हॉट।
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तुझे पता है एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, ऐसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
4: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
7: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
8: दिस इज तापसी पन्नू,
6: आप सभी को ईद मुबारक।
9: इट्स हॉट।
6: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
7: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
5: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.
0: Mirchi Ganu ki Eidi. Only on Mirchi, it's hot.

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: चले जी, आसमान के टिमटिमाते हुए तारों को जरा देख ही लें। ईद अल अधा आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। इस वक्त अगर कतर को देखने की कोशिश करें तो कोने कोने से बस ईद अल अधा की गूंज जो है वो जरूर सुनाई दे रही है। एंड अगर लगे कि क्या कुछ खास किया जाए तो शाम के वक्त सीधा अगर आपको कहीं पहुंचना है तो उस जगह का नाम है कटारा कल्चरल विलेज, जहां 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ढेर सारे एंटरटेनिंग इवेंट्स जो है आपके लिए जरूर लाइंड अप है। कतर के कल्चर ट्रेडिशन को करीब से जान पाएंगे, लेकिन इसके साथ कुछ तो और खास है जो जरूर आप देख पाएंगे। क्या है ये सब कुछ जानने के लिए टिक के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची इट्स हॉट।
2: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

के खाइए है अगर सेवई और बिरयानी तो कीप डांसिंग एंड फॉरगेट कैलोरीज की कहानी. Authentic, original, and better than our right.

0: बच्चों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एहसास
1: घर दे कम ना रुकन गे ओ जिम विच फटे चकांगे
2: यू बेटर वॉच हर शाइन
1: टारगेट पूरे करन गे हुन बदले रूल जमाने दे

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay, best rate, no stress. iPay wallet का भरोसा। Download कीजिए आज ही iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the
1: iPay. मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 7. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, it's hot.
2: Time check in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private.

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Mirchi Ganuki Eidi. Only on Mirchi, it's hot.

0: ईद की पार्टी आपकी तरफ से और सेलिब्रेशन खास बनाने के लिए दानों की ईदी मिर्ची की तरफ से।
1: Yeah, the meat bros. Just tell me.

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 89.6 मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अरे आपकी और हमारी जोड़ी ये किसी तारे सितारे से कम थोड़ी ना है। वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू कदर नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची इट्स हॉट। सबसे पहले आप सभी को ईद अल अधा की बहुत सारी मुबारकबाद। अगर लगे कि आसमान में टिमटिमाते हुए तारों को इस वक्त देखना है तो सीधा कहीं पहुंचना है तो उस जगह का नाम है कटारा कल्चरल विलेज। 27, 28, 29 तीनों दिन ठीक रात 8:30 बजे अगर आप कुछ विटनेस कर पाएंगे तो वो है फायरवर्क्स, जिसका होता है हम सभी को बेसब्री से इंतजार। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, बस अपनी पलटन को लेकर वहां पहुंचने की तैयारी करें, बाकी मिठाइयां खाते रहें, बांटते रहें, साथ ही खुशियां जो हैं वो फैलाते रहें। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
2: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहे। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
3: जी कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
2: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
3: मीसम नाम है।
2: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
3: 1200 रुपए।
2: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
3: हाँ जी, 1st September 1980।
2: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
3: जी
2: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
3: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह। गर्लफ्रेंड्स से ज्यादा करता हूँ बातें।
2: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
3: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
2: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
3: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
2: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर एक ही बार में पूछने ना, आपको क्या पड़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
3: सर
4: इतना गुस्सा मत होइए सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे आपकी गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
3: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
4: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ
3: पिटोगे,
4: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को,
3: कुकड़ों को, कुकड़ों को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet का भरोसा। Download कीजिए आज ही iPay, the best remittance rate in Qatar.
1: Let's do the iPay.
2: मिर्ची गानों की ईदी। Only on मिर्ची, it's hot.

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अरे आज तो कोने कोने में बस एक ही गूंज और एक ही शोर है कि ईद का जश्न धूमधाम से हर जगह मनना ही चाहिए। वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू कतर नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची इट्स हॉट। आप सभी को ईद अल अधा की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस वक्त अगर कतर को देखने की कोशिश करें तो ढेर सारे प्रोमिनेंट मॉल्स में बहुत सारे एक्साइटिंग इवेंट्स सबके लिए लाइन अप है। सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर? बच्चे बूढ़े और जवान सबके लिए कुछ ना कुछ खास जो है जरूर मिलेगा। जाइए, इंडोर एक्टिविटीज को जरा एंजॉय करके आइए, उसके बाद घर पर जो खास दावत रखी जाए उसमें हमें जरूर याद करें। स्टेडियो टू मिर्ची इट्स हॉट।
2: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: पार्टी आपकी तरफ से और सेलिब्रेशन खास बनाने के लिए दानों की ईदी मिर्ची की तरफ से।
1: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी, आग लगेगी, आग लगेगी।

0: छोटी तूने कोई भसड़ मचा रखी है रानी, भसड़ मचा रखी है।
1: सुनते रहिए गानों की ईदी, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची स्टोरीज,
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
4: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: अर्ज किया है
7: इरशाद

0: IPay payments ka wah tarika. With IPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
3: Hi Mirchi listeners, this is Jacqueline Fernandez.
4: Wishing all of you guys a very very Eid Mubarak.
5: It's hot.
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
6: Only on 89.6 Mirchi 1.
7: Mirchi 1.
6: It's hot.
8: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
4: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स्थ स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
3: वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड
2: बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: This Eid, the magic comes alive at Abu Sidram Mall. Join Layali Eid at Abu Sidram Mall on 27th, 28th and 29th May from 6 p.m. to 10 p.m. and experience the spectacular Aladdin show, live entertainment, kids activities and much more. Abu Sidram Mall, your Eid destination.

0: रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
2: अरे सूरज चाचू, हम सब तो छुट्टियां मना ही रहे, आप भी जरा छुट्टियां मना के आ ही जाएं।
3: मिर्ची अंशु।
2: Hey, welcome back. You're listening to Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi, and this is RJ Anshu with you. Well, इस वक्त अगर कतर को देखने की कोशिश करें तो भाई साहब, अगर कोई मौसम है तो वो है छुट्टियों का मौसम, ईद अल अधा की ये खूबसूरत छुट्टियों का मौसम। एंड बस इसके चलते कहीं कुछ हो रहा है तो वो है हर घर में जश्न, साथ ही कतर के कोने कोने में ये माहौल जो है हम जरूर फील कर सकते हैं। तो भैया, जब हम सब कोई इतने व्यस्त हैं इस अच्छे से मौसम

0: मना के आ ही जाए।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: लेकिन ना ना, इन्होंने तो मेरी बात ना ठानने का पूरी तरह से मान ही लिया है। जब जब हमारी छुट्टियां होती है ना, ये जो है काम में जरा ज्यादा लग जाते हैं। जरा देखिए, अभी गर्मी की छुट्टियां आएंगी और ये जो है कितना ज्यादा काम करेंगे। वैसे अगर आज के मैक्सिमम टेम्परेचर की मैं बात करूं, सो इट इज गोइंग टू बी अराउंड 44, मिनिमम इज गोइंग टू बी अराउंड 32। बहुत ज्यादा ख्याल रखें, गर्मी ग्रेजुअली बढ़ती ही जा रही है। खुद को हाइड्रेटेड रखना है एंड दिमाग इन कलेजे की ठंडक के लिए एक ही काम करना है, सुनते रहना है कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन वर्शी। इट्स हॉट। बंदी का नाम अंशु।
2: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future, call now 3100813.
3: मिर्ची गानों की ईदी। Only on मिर्ची, it's hot.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 7. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट.
2: Time check in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical.

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: देखो कतर का कोना कोना आज तो बस एक ही बात कह रहा है कि आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, ईद अल अधा बहुत बहुत मुबारक। जिंदगी में खुशियां तो आएंगी, साथ ही घर में शीर कोरमा भी आएगा। इतना ही कहना है कि दोस्त यारों के साथ आज के दिन को खूब अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें, परिवारजन के साथ बहुत सारा वक्त स्पेंड करें। इसके अलावा अगर दिल करे क्या ही करें, कहां ही जाएं, तो बस सारे अपडेट्स के लिए टिक्के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची इट्स हॉट।
2: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

लटीना चिकनी चमेली कट कट रीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यूं तो किया बर्बाद तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
2: अथॉरिटी से बनवाया था, शेखराय से।
1: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
2: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
1: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
2: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
1: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: तो कोई बात नहीं होती, कैंसिल हम दलाल को, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
1: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
2: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
1: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
2: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
1: नहीं, मेरे को दिए आपने?
2: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
1: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
2: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
1: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चला कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए, आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
2: सर मैं दलाल से बात करूँगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
1: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई।
2: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, हमको कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है, चल जाएगा, सबका बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं।
1: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
2: हाँ जी।
1: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: गलती होगी साहब जी,
1: गलती होगी साहब जी। कान पकड़,
2: पकड़ ले।
1: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ो को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: घर दे कम ना रुकन गे, ओ जिम विच फट्टे चकांगे।
4: You better watch her shine।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the
1: iPay. 89.6 Mirchi gaano ki ED. Only on Mirchi. It's hot.

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: चले जी आसमान के टिमटिमाते हुए तारों को जरा देख ही ले। ईद अल अधा आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। इस वक्त अगर कतर को देखने की कोशिश करें तो कोने कोने से बस ईद अल अधा की गूंज जो है वो जरूर सुनाई दे रही है। एंड अगर लगेगी क्या कुछ खास किया जाए तो शाम के वक्त सीधा अगर आपको कहीं पहुंचना है तो उस जगह का नाम है कटारा कल्चरल विलेज, जहां 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ढेर सारे एंटरटेनिंग इवेंट्स जो है आपके लिए जरूर लाइंड अप है। कतर के कल्चर एंड ट्रेडिशन को करीब से जान पाएंगे, लेकिन इसके साथ कुछ तो और खास है जो जरूर आप देख पाएंगे। क्या है ये सब कुछ जानने के लिए टिक के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची इट्स हॉट।
2: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: बजाते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तुझे पता है एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, ऐसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
4: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
5: मिर्ची इट्स हॉट
6: अर्ज किया है
7: इरशाद

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
3: हाय दोस्तों, मैं हूँ मीका सिंह और मेरी तरफ से आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
4: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.
0: Mirchi Ganuki Idi. Only on Mirchi, it's hot.

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है। What did you steal in your childhood?
4: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे। मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए। कभी आज तक बोला नहीं कि वो मैं था।
3: What a way to confess, अभय देओल। अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
2: Bolda. Only on Mirchi, it's hot.

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अरे खुद के लिए तो हर कोई जीता है, औरों के लिए जिए तो कोई बात है। वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची इट्स हॉट। वेल, सबसे पहले आप सभी को ईद अल अधा की दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद, और इतना ही कहना चाहेंगे कि क्यों ना इस ईद एक कोशिश आप और हम मिलकर जरूर करें कि अपनी जिंदगी में जो खुशियां हैं उनमें से किसी और की जिंदगी को रोशन करने की कोशिश बस करते रहें। वो कहते हैं ना, खुद के लिए जिया तो क्या जिया, औरों के लिए कुछ किया तो समझो बहुत कुछ किया, और दिल से बस जी ही लिया। तो बस यही कोशिश करें कि आज किसी के लिए कुछ तो कर दें, किसी के चेहरे पर जरा सी मुस्कान ही ला दें, या तो फिर अपने पास में जो बहुत कुछ है उसमें से थोड़ा किसी और की जिंदगी को रोशन करने के लिए बस हम ले ही चलें। क्या कहती पब्लिक? स्टेडियम टू मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000-1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet का भरोसा. Download कीजिए आज ही. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the
1: iPay. मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 9. सुनते रहिए 89.6. मिर्ची वन, it's hot.
2: Time check. In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: द होल थिंग इज दैट रुपया सबसे बड़ा है भैया। अब जब एक्सचेंज के रेट्स इतने कमाल हो तो पैसे को हम सर आंखों पे ना बिठाएं तो किसे ही बैठाएं। हैविंग सेड दैट आईपी मनी में अच्छे एक्सचेंज रेट्स का बोलबाला है। अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.13, पाकिस्तानी रुपीज 76.89, बांग्लादेशी टाका 33.67, नेपाली रुपीज 41.79 एंड इसके साथ ही श्रीलंकन रुपीज 88.27। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां, लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची इट्स हॉट। एंजॉय।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो
3: मैडम, डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
2: हेलो, डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
3: एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
2: हेलो,
3: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए। मैडम डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
2: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे?
3: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है, यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके। अभी भी आ रही है?
2: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
3: हैं मोबाइल पे
2: और क्या?
3: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
2: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
3: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
2: आपको बताना चाहिए था ना
3: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यहाँ खम्भे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टर्बेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
2: आप खम्भे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते डिस्टर्बेंस आ रही है? दिमाग खराब?
3: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
2: आपका दिमाग खराब?
3: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है? पहले डिसाइड करिए।
2: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
3: नवेद लिखिए, नवेद।
2: डिस्टर्बेंस आ रही है।
4: पायल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। डिस्टर्बेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोड़ो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: Mirchi Gano ki Eidi. Only on Mirchi, it's hot.

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 89.6
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: सुनिया सुनिया रातां ते रातां दे विच तू

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मुबारक ईद मुबारक मिर्ची के सभी लिसनर्स को ईद अलदा की बहुत बहुत मुबारकबाद। बस दिल से यही दुआ है कि आपकी जिंदगी में खुशियां आए और ढेर सारी खुशियां आए, एंड इसके साथ ही आप जो है अपनी जिंदगी की खुशियां औरों तक जरूर पहुंचाते रहें। वल ऊपर वाला आपके दिल की सभी दुआओं को कबूल करे, एंड जितनी भी आपकी हसरतें हैं वो सारी की सारी पूरी हो, यही दुआ आप सबके लिए मिर्ची की पूरी टीम की तरफ से। फिलहाल टिके बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची इट्स हॉट।
2: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: Get back.

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
4: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
5: मिर्ची इट्स हॉट कतर में है और ड्राइविंग लाइसेंस भी है। क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की,
6: तो इंतजार खत्म। RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
5: अभी कॉल करें 3100-0813।
7: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
8: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
9: Hi, this is आमिर खान।
10: सभी दर्शकों को मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा।
5: It's hot. It's hot.
7: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
8: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
11: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 89.6
1: मिर्ची
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: देखो कतर का कोना कोना आज तो बस एक ही बात कह रहा है कि आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, ईद अल अधा बहुत बहुत मुबारक। जिंदगी में खुशियां तो आएंगी, साथ ही घर में शीर कोरमा भी आएगा। इतना ही कहना है कि दोस्त यारों के साथ आज के दिन को खूब अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें, परिवारजन के साथ बहुत सारा वक्त स्पेंड करें। इसके अलावा अगर दिल करे क्या ही करें, कहां ही जाएं, तो बस सारे अपडेट्स के लिए टिक के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची इट्स हॉट।
2: Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center.
3: Bollywood Bol Dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bol Dal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
4: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
5: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
6: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
5: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
4: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
3: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi, it's hot.

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: घर दे कम ना रुकणगे ओ जिम विच फट्टे चकांगे।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10. आप सुन रहे हैं मिर्ची वन कतर.
2: Time checks in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private

वाइब सेट हो गई है, मिर्ची पर कानों की ईदी जो मिल रही है। Can I win?

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तो कोशिश ही नहीं करना चाहती।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: मिर्ची पे ट्यून डन हूँ आप और भाई, जिस हिसाब की कॉमेडी फिल्में आ रही है ना इंडस्ट्री की तरफ से, दैट इज मेकिंग मी थिंक कि भाई क्या हो गया है, क्या हम अपने सोच का दायरा बढ़ा नहीं सकते हैं। सो है जवानी तो इश्क होना है, ये एक अपकमिंग फिल्म है जो डेविड धवन की अपेरेंटली लास्ट डायरेक्टोरियल मूवी होने वाली है। हाँ ठीक है, आई अग्री, डेविड धवन का एक सिग्नेचर है कॉमेडी मैडनेस, बट क्या उस चक्कर में हम आज भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और इनफिडेलिटी को वैलिडेट करें, ये जरूरी है? आई जेन्युइनली लव ब्रेन रॉट कॉमेडी, आप दीजिए मुझे उस तरीके की स्क्रिप्ट और उस तरीके की कहानी कि मैं पागल हो जाऊं बाय द एंड ऑफ द मूवी। बट सोचने वाली बात तो ये है कि क्या जेन्युइनली लोगों को हंसाने के लिए सिर्फ यही टॉपिक्स रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री के पास? मतलब पूरी फिल्म में हीरो के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, वो 10 तरीके की चीजें कर रहा है, धोखा दे रहा है, फलाना ढिमकाना, और बाय द एंड वो एक मोनोलॉग देगा और सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। यू नो, आज भी 2026 में इस अप्रोच के चेंज ना होने का जिम्मा हमें भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर देखेंगे नहीं ऐसी फिल्में तो हमें परोसी भी नहीं जाएंगी ना ऐसी फिल्में, इफ यू नो व्हाट आई मीन। माइंड यू, ये फिल्म 5th ऑफ जून को रिलीज होने वाली है एंड आई एम नॉट एट ऑल एक्साइटेड फॉर इट। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 89.6 89.6 हेलो
2: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
2: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पहुंचा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो अभी तो बताओ।
2: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
2: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
2: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
1: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
2: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
2: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
1: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
2: आगे वो भी आगे हैं, आगे वो भी आगे। एक मिनट होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
2: आगे वो भी आगे, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो, जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप ला रहा हूँ,
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
2: किसकी डेथ हो गई सर?
1: मेरे भाई की डेथ हो गई।
2: रुकिए आशीष भार्गव सर, आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसा हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
2: मैं कहाँ रहा हूँ,
1: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
2: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने जा रहा है, परेशान हूँ मैं, हर साल का रिटर्न वेटर्न सब फाइल कर देता हूँ। वो अभी
2: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
2: थैंक
1: यू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस्ड फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
5: ghar de kam na rukkan ge oh jum vich phatte chakkan ge, you better watch her shine.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची.

0: खाइए और सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एफएम।
1: भाई अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो
2: मिर्ची।
1: माँ बहन का ट्रेलर, भाई ये अपकमिंग फिल्म का नाम है। हाँ जी, माँ बहन। आपको क्या लगा कि मैं गाली गलौज कर रही हूँ? इतनी बेवकूफ लग रही हूँ क्या आपको? एनीवे, ये ओटीटी पे रिलीज होने वाली अपकमिंग फिल्म है जिसमें माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और धारणा, हु स्टार्टेड हर करियर एज अ कंटेंट क्रिएटर, ये लीड रोल्स निभाते नजर आ रही है। द मूवी इज डायरेक्टेड बाय सुरेश त्रिवेणी, जो 4th of June से स्ट्रीम करना शुरू होगी। एंड ट्रेलर देख के समझ में आ रहा है कि भाई ये कॉमेडी ड्रामा लेकर आने वाली है एक टेंस लाफ आउट लाउड कवर अप गेम, जिसमें एक माँ अपनी दो बेटियों के साथ काफी रोमांचक जिंदगी जीते नजर आ रही है। एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर दिस वन। राजकुमार राव और कीर्ति सुरेश स्टारर फिल्म रफ्तार की बात कर लेते हैं, जिसको एक नया रिलीज डेट मिल चुका है। हाँ जी, अब ये फिल्म थिएटर्स में अक्टूबर 16 को रिलीज होगी। बाकी आदित्य निम्बलकर डायरेक्टोरियल ये फिल्म इंडिया के रैपिडली ग्रोइंग एड टेक सेक्टर को टच करने वाली है, विच इज गोइंग टू बी एन इमोशनल ड्रामा विद थीम्स ऑफ एम्बिशन एंड मॉडर्न एंटरप्रेन्योरियल कल्चर। This is a major cross-industry collaboration जो किया है अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म वेलकम टू द जंगल के लिए विद भोजपुरी एक्टर एंड सिंगर अक्षरा सिंह। हाँ जी, इनका एक गाना रिलीज हुआ है जिसका नाम है घिस घिस घिस। ऑल्दो बीइंग अ बिहारी, मुझे कुछ खास समझ नहीं आया ये गाना, क्योंकि फिर से इसमें उसी तरीके के म्यूजिक और उसी तरीके के लिरिक्स का इस्तेमाल है जिससे हम बिहारी अपने आप को रिलेट नहीं करना चाहते। बट एज वी ऑल नो, बॉलीवुड और क्लीशे गो हैंड इन हैंड। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ। Stay tuned, it's hot.
2: Mirchi Ganuki ED. Only on Mirchi, it's hot.

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तुझे पता है एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
4: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
7: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
8: हाय सलाम कतर, दिस इज दिशा पाटनी ऑन 89.6 मिर्ची ऑनलाइन कतर एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी ईद, ईद मुबारक।
6: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
7: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
9: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
5: Gano ki Eid on Mirchi. It's hot.

0: सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एसॉन्ट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
4: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एसॉन्ट।
1: खेलो मगर प्यार से।
0: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, और इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो अपने डेली ड्रिल की बात कर रही हूँ यार। फाइंडिंग मिर्ची फिल्म जी। हाँ जी, इट्स टाइम। आपको तो पता ही है, आपको इस वक्त मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करना होता है अपना फोन नंबर ताकि मैं आपको कॉल करूँ और ये गेम आपके साथ खेलूँ। तो आज मेरी बात किससे हो रही है?
3: रिंकू से।
1: रिंकू जी, कैसी हैं आप?
3: बढ़िया हूँ।
1: अरे क्या बात है, गेम खेलिएगा?
3: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल उसी के लिए।
1: ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शाहरुख खान का नाम ओके यानी ओम कपूर किस फिल्म में था?
3: ओम शांति ओम।
1: ग्रेट। ओम शांति ओम में शांति प्रिया को कौन मारता है?
3: अर्जुन रामपाल।
1: अर्जुन रामपाल ने लीड गिटारिस्ट का रोल किस फिल्म में किया है?
3: रॉक ऑन।
1: ओके, रॉक ऑन का कौन सा हीरो भाग मिल्खा भाग में भी है?
3: ये फरहान अख्तर।
1: फरहान अख्तर की फिल्म जिसमें ऋतिक रोशन है?
3: जिंदगी ना मिले दोबारा।
1: ग्रेट। ZNMD में लैला का रोल किसने किया है?
3: कटरीना कैफ।
1: कटरीना किस फिल्म में पॉलिटिशियन बनी है?
3: राजनीति।
1: राजनीति का कौन सा हीरो कटरीना का एक्स भी रह चुका है?
3: रणबीर कपूर।
1: रणबीर कपूर ने कौन सी बायोपिक की है?
3: संजू ही तो है।
1: संजू में रणबीर कपूर का बेस्ट फ्रेंड कौन बनता है?
3: दोस्त बनता है वो गुज्जू, उसका नाम मुझे नहीं मालूम है।
1: चलिए कोई बात नहीं, इतना अच्छा जो अभी तक खेला है आपने उसके मद्देनजर आपको ये टैग तो देना बनता है।
0: मिर्ची फिल्म जी।
1: तो चलो भाई, आज के एपिसोड में रिंकू जी एक मिर्ची फिल्मची तो बन चुकी हैं हमारी, बाकी इसके आगे का गेम अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यू नो द ड्रिल, मिर्ची श्रुति के डीएम में जाके अपना नंबर भेजिए। टिल देन एंजॉय द अपकमिंग सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची।
4: मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक।
0: गानों की ईदी ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट

0: Mirchi, it's hot, hot.
1: Finding Mirchi for Lunchy.
2: Shruti. Main to badi filmi hu.
1: So if you are new to the show, let me tell you, main roz ye game khelti hu jiske through I find a Mirchi for Lunchy. Basically, there are a series of questions from Bollywood jinka answer agar aapne sahi sahi diya, to ye tag aapko mil jata hai. So aaj ye game humne shuru kiya tha Rinku ji ke saath, jo ek point pe atki hai, aur uske aage ka game khelne ke liye ab hamare saath hai Meenakshi ji. Kya aap ready hai?
3: हाँ जी.
1: ओके, तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ कि फिल्म संजू में रणबीर कपूर का बेस्ट फ्रेंड कौन बनते हैं?
3: विक्की कौशल.
1: विक्की कौशल किस फिल्म में पाकिस्तानी मेजर का रोल प्ले करते हैं?
3: राजी.
1: राजी में सहमत का रोल किसने प्ले किया है?
3: सहमत, ये आलिया भट्ट.
1: आलिया भट्ट टीवी एंकर किस फिल्म में बनती है?
3: रॉकी और रानी.
1: रॉकी और रानी में जिम फ्रीक कौन है?
3: रणवीर सिंह
1: ब्रेड पकौड़े की कसम किस फिल्म में खाते हैं?
3: शादी मुबारक.
1: तो आप बोल सही रही हैं, उनका ये कंपनी का नाम होता है भले ही, लेकिन मूवी का नाम कुछ और है.
3: बैंड बाजा बारात.
1: ग्रेट. बैंड बाजा बारात में जिसके साथ व्यापार उसके साथ कभी ना करो प्यार, ये डायलॉग कौन बोलता है?
3: अनुष्का शर्मा.
1: ग्रेट. अनुष्का शर्मा कुश्ती किस फिल्म में करती है?
3: सुल्तान.
1: वाओ. सुल्तान में सलमान खान का कोच कौन बना है?
3: रणदीप हुडा.
1: आलिया को किस फिल्म में किडनैप करते हैं?
3: रणदीप हुडा हाईवे.
1: क्या बात है. तो इसी के साथ आज हमारी दूसरी मिर्ची फिल्मची बनी है मिस मीनाक्षी.
0: मिर्ची फिल्मची.
1: सो वरी नॉट माई फ्रेंड, अगर आज ये गेम मिस हो गया देन कल एक बार फिर से मौका मिलेगा. यू नो द ड्रिल, मिर्ची श्रुति के डीएम में जाके अपना नंबर भेजना है एंड रेस्ट ऑफ इट इज गोना बी टेकन केयर बाय मी. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ. स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल.
4: मुबारक ईद मुबारक.
0: गानों की ईदी ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Alan Mirchi. It's hot. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
2: अथॉरिटी से बनवाया था, शेखराय से।
3: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
2: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
3: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
2: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
3: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: तो कोई बात नहीं होती, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
3: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
2: तो बनाकर तो उसमें था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
3: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
2: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
3: नहीं, मेरे को दिए आपने?
2: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
3: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया।
2: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
3: अरे उन्होंने क्या कहा था यार, उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चालान कट जाएगा। ठीक है,
2: साहब जी को साहब जी कैसे ऐसे कैसे हो सकता है?
3: ऐसे कैसे हो सकता है यार, उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
2: सर मैं दलाल से बात कर रहा हूँ, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊँ
3: कैंसिल? मैं क्या जानू, उसे बनवाया था, उसे पूछो भाई।
2: उसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, हमको कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है, चल जाएगा, सबका बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं।
3: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
2: हाँ जी।
3: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं, मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: गलती होगी साहब जी,
3: गलती होगी साहब जी। कान पकड़,
2: पकड़ ले
3: मेरे को, दिख रहा है यहाँ से मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस, सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000-1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: It's hot.

0: गानों की ईदी ऑन मिर्ची। इट्स हॉट हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज।
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, ऐसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
4: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी। और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
0: मिर्ची, इट्स हॉट। Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate in style with R&B at the newly opened store and shop the latest trendy fashion across women, men and kids. And the celebration doesn't stop. Get free QAR 50 gift voucher on shopping of QAR 200. More fashion, more value, more reasons to shop today. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B. Love it. Wear it.
5: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
6: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
7: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
8: हाय, मैं हूँ आलिया भट्ट और आप सुन रहे हैं मिर्ची।
9: विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी ईद।
6: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
7: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
10: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
0: Gaano ki Eid on Mirchi. It's hot.

0: सेवैया खाइए और सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची हिट्स ऑन।
1: ओ चलती कुड़ी, ओ चलती कुड़ी।

0: मिर्ची, it's hot, hot.
1: ये गाने सिर्फ गाने नहीं हैं।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: हाँ जी बाबू मोशाय, देखो जिंदगी में टाइम एंड अगेन हम किसी न किसी सिचुएशन के थ्रू जा रहे होते हैं, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, लेकिन इन सारी सिचुएशंस को समझाने के लिए कुछ गाने हैं जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू हमें मिले हैं, जिनको अप्रिशिएट करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे उस सिचुएशन के लिए वो गाना कुछ ज्यादा ही एप्ट बैठता है। तो बस आज का पांच का पंच की लिस्ट इन्हीं गानों को डेडिकेटेड है, जिसमें सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट फिल्म हाईवे से अबाउट द सॉन्ग पटाखा गुड्डी। वेल अबाउट द मूवी, ये 2014 में रिलीज हुई थी, स्टारिंग आलिया भट्ट एंड रणदीप हुडा एज लीड्स, डायरेक्टेड बाय इम्तियाज अली। म्यूजिक इस मूवी का है AR रहमान द्वारा और लिरिक्स लिखे हैं इरशाद कामिल ने। और क्या ही लिख दिया है यार इस गाने में उन्होंने कि मालिक ने जो चिंता दी तो दूर करेगा वो ही। और कसम से ये गाना कितना सेंस बनाता है ना, जब आप फंसे पड़े होते हैं तो आपको लगता है कि यार कोई रास्ता ही नहीं है, बट उस वक्त हमें समझना चाहिए, याद रखना चाहिए कि अगर हमारी जिंदगी में ये सिचुएशन आई है देन ऑफ कोर्स वी आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग इट। बस थोड़ा सा दिमाग शांत करके अपने आप को उस रास्ते पे लेकर जाना है और बस देखना वो रास्ता कब खत्म हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। वेल कुछ ऐसे ही चार और गाने डिस्कस करना बाकी है इन माई पांच का पंच लिस्ट, बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल। अभी के लिए यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी जिसका नाम है श्रुति।
4: मुबारक ईद मुबारक,
0: गानों की ईदी ऑन मिर्ची, इट्स हॉट हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
2: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
3: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
2: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई।
2: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
3: मैं मुझे नहीं पता।
2: हम साथ
3: कौन
2: साथ
3: सी है? ओ हाँ, हम साथ साथ है। और ये
2: नाना पाटेकर कटरीना कैफ,
3: ये भाई बहन थे। वेलकम।
1: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट हॉट।
1: बाबू मोशाय, ये गाने नहीं चलती फिरती समझदारी है।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। लेकिन आप तो समझदार हैं बाबू मोशाय, इसलिए तो आज का पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे गानों की डिस्कशन कर रही हूँ जो हमारी जिंदगी में समझदारी भरते हैं। हाँ, तो लिस्ट में सबसे पहले वी डिस्कस्ड अबाउट द सॉन्ग पटाखा गुड्डी फ्रॉम द मूवी हाईवे। और अब नंबर दो पे लेट्स टॉक अबाउट कोक स्टूडियो 14 का गाना तू झूम, जो आया था इन द ईयर 2022। सिंगर्स हैं आबिदा परवीन एंड नसीबुलाल। लिरिक्स हैं इस गाने के जुल्फिकार जब्बार खान और अदनान धूल के। म्यूजिक दिया है जुल्फी एंड अब्दुल्ला सिद्दीकी ने। और भाई साहब, इस गाने का एक एक लाइन आपके दिल में ऐसे जाके लगता है कि क्या ही बताओ। स्पेसिफिकली दिस वन,
4: समझ के की करना है, दिल नु ऐ समझावा तू झूम।
1: सबको समझ के क्या ही कर लेंगे, अपने दिल को ये चीज समझा लो, इसमें ही समझदारी है बाबू मोशाय। क्योंकि लोगों को जो सोचना है आपके बारे में वो सोचते रहेंगे। आप कितनी ही मेहनत कर लो अपनी इमेज बदलने की, सामने वाले को विश्वास दिलाने की अबाउट थिंग्स दैट यू बिलीव इन, बट ऐसा होगा नहीं। इसलिए बेटर ये है कि दूसरों की चिंता किए बिना अपनी जिंदगी चलाते रहो। मूविंग ऑन इन द लिस्ट, नंबर तीन पे लेट्स टॉक अबाउट फिल्म तमाशा से सफरनामा गाने के बारे में। भाई भाई, 2015 में आई थी ये मूवी, डायरेक्टेड बाय इम्तियाज अली अगेन। म्यूजिक इस मूवी का है एआर रहमान द्वारा, लिरिक्स हैं इरशाद कामिल के, और इस गाने को गाया है लकी अली ने। स्पेसिफिकली दिस लाइन जस्ट टेक्स अवे माय हार्ट।

0: ऐसा होता है ना कि हम पूरी दुनिया में चैन सुकून ढूंढना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जब तक आपका दिल आपका मन शांत नहीं होगा आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। सो ऑल इन ऑल बाबू मोशाय, जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं उसकी शुरुआत अपने अंदर से करो। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
1: मिर्ची गानों की ईदी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: Abra los ojos, open your eyes. Oye, holy, holy, que David.

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट

0: मिर्ची, इट्स हॉट हॉट।
1: ये गाने नहीं आपकी जिंदगी के सल्यूशन है बाबू मोशाय।
0: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: तो हमारी जिंदगी में कई सिचुएशंस होती हैं और हर सिचुएशन के लिए कोई ना कोई गाना बिल्कुल एप्ट बैठता है। तो अगर आपकी जिंदगी में फिलहाल नेगेटिव सिचुएशंस चल रही हैं तो बाबू मोशाय आज का पांच का पंच की लिस्ट बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आई एम डिस्कसिंग अबाउट सच हिंदी सॉन्ग्स जो हमें मोटिवेट करते हैं, हमें समझ देते हैं। इन द लिस्ट सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट पटाखा गुड्डी गाना फ्रॉम द मूवी हाईवे। नंबर दो पे हमने तू झूम की बात की फ्रॉम कोक स्टूडियो 14। नंबर तीन पे वी टॉक्ड अबाउट तमाशा से सफरनामा सॉन्ग के बारे में। और अब बारी है नंबर चार पे टू टॉक अबाउट फिल्म पीकू से जर्नी सॉन्ग के बारे में बाबू मोशाय। वेल, ये मूवी डायरेक्ट की सुजीत सरकार ने जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2015, जिसमें अमिताभ बच्चन, इरफान खान और दीपिका पादुकोण लीड रोल्स में थे। टॉकिंग अबाउट द म्यूजिक, अनुपम रॉय का अल्टीमेट म्यूजिक है, लिरिक्स भी उनके ही है अलॉन्ग विद मनोज यादव। और अगर जर्नी सॉन्ग की पर्टिकुलरली बात करें तो आवाज है अनुपम रॉय, श्रेया घोषाल, अनुज गुरवारा और एस जानकी की। एंड भाई, इस गाने का ये वाला लाइन जो है ना,
3: वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिश अनजान है अब क्या करें,
1: वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे। भाई, यही तो फलसफा होना चाहिए ना हर इंसान की जिंदगी का, कि जितना भी वक्त है उसको इस तरीके से जियो मानो वो आखिरी पल हो आपका, और अगर दर्द है तो उस पे मरहम करो, वरना नासूर बनते उसको देर नहीं लगेगी। वेल, मूविंग ऑन इन द लिस्ट, नंबर पांच पे लेट्स टॉक अबाउट द सॉन्ग मांझा फ्रॉम द मूवी काई पोचे, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2013, डायरेक्टेड बाय अभिषेक कपूर। मूवी के लीड्स थे सुशांत सिंह राजपूत, राजकुमार राव एंड अमित साड। म्यूजिक है अमित त्रिवेदी का, लिरिक्स है स्वानंद किरकिरे के। एंड टॉकिंग अबाउट दिस सॉन्ग, अमित त्रिवेदी और मोहन कनन ने क्या जस्टिस किया है इस गाने के साथ यार, स्पेसिफिकली गाने का ये पार्ट।
4: रिश्ते पंखों को हवा देंगे, रिश्ते दर्द को दवा देंगे, जीत कभी।
1: रिश्ते पंखों को हवा देंगे, रिश्ते दर्दों को दवा देंगे। हमारी जिंदगी में ये जो रिश्ते होते हैं ना, वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए सही रिश्ते बनाना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके अप्स में तो सब खड़े होते हैं, असली रिश्ते तो तब पता चलते हैं जब आपका डाउनफॉल होता है। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। वैसे मेरी इस लिस्ट में अगर आप भी कुछ ऐसे ही गाने ऐड करना चाहो, देन फील फ्री टू डू दैट। यहाँ के अलावा कनेक्ट कर सकते हैं ना फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे, आई एम देयर विद द नेम MIRCHISHRUTI, यानी मिर्ची श्रुति। इन द मीन टाइम, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक,
0: गानों की ईदी ऑन मिर्ची, इट्स हॉट हॉट।
6: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।
0: बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद की सब

0: एडी दौड़ी वोड़ी चढ़ गया मैं मुझको बेबी लक्की कर बात हमारी पक्की कर इतना क्या सोचे मुझे हाँ बोल के काम तू नक्की कर
1: Keep enjoying sevai, shawarma, biryani and kebab. Mirchi pe aap sun rahe hain gaano ki eidi janab.

0: सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एसॉन्ट
1: 89.6
0: 89.6
2: मिर्ची
0: मुबारक मुबारक गानों की ईदी ऑन मिर्ची हॉट बिरयानी की खुशबू सेवई की स्वाद ईद की सबको मुबारकबाद

0: और सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एसॉट।
1: हेलो।
2: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना।
1: हाँ।
2: कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
3: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
1: कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
3: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
1: मीसम नाम है।
3: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
1: 1200 रुपए।
3: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
1: हाँ जी, 1 सितंबर 1980।
3: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
1: जी
3: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
1: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
3: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
1: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
3: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
1: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
3: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछनी है ना आपको, क्या पढ़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
1: सर,
4: इतना गुस्सा मत होइए। सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे आपकी गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
1: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
4: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ only on मिर्ची it's hot
5: Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate in style with R&B at the newly opened store and shop the latest trendy fashion across women, men and kids. And the celebration doesn't stop. Get free QAR 50 gift voucher on shopping of QAR 200. More fashion, more value, more reasons to shop today. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B, love it, wear it.
6: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइन्स सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
7: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
8: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
11: घर दे कम ना रुकन गे, ओ जिम विच फट्टे चकांगे।
12: You better watch her shine.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay. Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate in style with R&B at the newly opened store and shop the latest trendy fashion across women, men and kids. And the celebration doesn't stop. Get free QAR 50 gift voucher on shopping of QAR 200. More fashion, more value, more reasons to shop today. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B. Love it, wear it.
1: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: This Eid, the magic comes alive at Abu Sidram Mall. Join Layali Eid at Abu Sidram Mall on 27th, 28th and 29th May from 6 p.m. to 10 p.m. and experience the spectacular Aladdin show, live entertainment, kids activities and much more. Abu Sidram Mall, your Eid destination.
3: Mubarak Eid, Mubarak.
4: It's hot.

0: किसानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एस ऑन.
1: द होल थिंग इज दैट रुपया सबसे बड़ा है भैया. अब जब एक्सचेंज के रेट्स इतने कमाल हो तो पैसे को हम सर आंखों पे ना बिठाएं तो किसे ही बैठाएं. हैविंग सेड दैट आईपी मनी में अच्छे एक्सचेंज रेट्स का बोलबाला है. अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.13, पाकिस्तानी रुपीज 76.89, बांग्लादेशी टाका 33.67, नेपाली रुपीज 41.79 एंड इसके साथ ही श्रीलंकन रुपीज 88.27. तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां. लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. That's all. Enjoy.

மிர்ச்சி. It's hot, hot. बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद की सबको मुबारकबाद.

0: किसानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एहसास
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तुझे पता है एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
4: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
0: मिर्ची इट्स हॉट मरहबा दोहा, समथिंग बिग हैज जस्ट ओपन्ड एट दोहा सिटी सेंटर। योर फेवरेट फैशन ब्रांड R&B हैज ओपन्ड अ न्यूअर बिगर एंड ग्रेटर फैशन डेस्टिनेशन एट दोहा सिटी सेंटर। सेलिब्रेट इन स्टाइल विद R&B एट द न्यूली ओपन स्टोर एंड शॉप द लेटेस्ट ट्रेंडी फैशन अक्रॉस विमेन मेन एंड किड्स। एंड द सेलिब्रेशन डजंट स्टॉप, गेट फ्री QAR 50 गिफ्ट वाउचर ऑन शॉपिंग ऑफ QAR 200। मोर फैशन, मोर वैल्यू, मोर रीजंस टू शॉप टुडे। हेड टू द न्यूली ओपन्ड R&B स्टोर एट दोहा सिटी सेंटर, सेकंड फ्लोर टुडे। R&B, लव इट, वेयर इट।
5: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
6: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
7: नमस्कार, दिस इज रवीना टंडन, आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक।
5: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
6: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
0: Gaano ki Eid on Mirchi. It's hot. Hot. Biryani ki khushbu, sevai ki swaad, Eid ki sabko mubarakbad.

0: गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एहसास।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है। What did you steal in your childhood?
4: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे। मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए कभी, और आज तक बोला नहीं कि वो मैं था।
3: What a way to confess, अभय देओल। अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एहसास।
1: अरे सूरज चाचू, हम सब तो छुट्टियां मना ही रहे, आप भी जरा छुट्टियां मना के आ ही जाएं।
2: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
1: Hey, welcome back. You're listening to Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi, and this is RJ Anshu with you. Well, इस वक्त अगर कतर को देखने की कोशिश करें तो भाई साहब, अगर कोई मौसम है तो वो है छुट्टियों का मौसम, ईद अल अधा की ये खूबसूरत छुट्टियों का मौसम। एंड बस इसके चलते कहीं कुछ हो रहा है तो वो है हर घर में जश्न है, साथ ही कतर के कोने कोने में ये माहौल जो है हम जरूर फील कर सकते हैं। तो भैया, जब हम सब कोई इतने व्यस्त हैं इस अच्छे से मौसम को जीने में, यानी ये छुट्टियों को अच्छी तरह से बिताने में, तो मेरा इतना ही कहना है कि सूरज चाचू, आपको एक्स्ट्रा काम करने का क्या ही दिल कर रहा है, जरा आप भी छुट्टियां मना के आ ही जाए।
0: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: वेदर अपडेट।
1: लेकिन ना ना, इन्होंने तो मेरी बात ना ठानने का पूरी तरह से मान ही लिया है। जब जब हमारी छुट्टियां होती है ना, ये जो है काम में जरा ज्यादा लग जाते हैं। जरा देखिए, अभी गर्मी की छुट्टियां आएंगी और ये जो है कितना ज्यादा काम करेंगे। वैसे अगर आज के मैक्सिमम टेम्परेचर की मैं बात करूं, सो इट इज गोइंग टू बी अराउंड 44, मिनिमम इज गोइंग टू बी अराउंड 32। बहुत ज्यादा ख्याल रखें, गर्मी ग्रेजुअली बढ़ती ही जा रही है, खुद को हाइड्रेटेड रखना है एंड दिमाग इन कलेजे की ठंडक के लिए एक ही काम करना है, सुनते रहना है कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, इट्स हॉट। बंदी का नाम अंशु।
3: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future, call now 3100813.
4: मुबारक ईद मुबारक, मुबारक
0: ईद मुबारक। गानों की ईदी on मिर्ची, it's hot, hot. बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद की सबको मुबारकबाद।

0: किसानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एसॉस।
1: घर दे कम ना रुकन गे ओ जम विच फट्टे चकांगे।
2: You better watch her shine।

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000189 6 एंड गेट

0: रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: चल रुचि, अब ना हम इन लोगों से कभी बात नहीं करेंगे। ऐसा बोलकर हम जाते तो थे, लेकिन थोड़ी देर में वापस भी आ जाते थे।
2: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
3: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: Hi, this is me, Sara, aapki 90s ki yaadon ka pitara, and now you tune in with me on Mirchi. Yaar, bachpan mein kitna simple tha na, ladai hoti thi, to hum kuch der baat nahi karte the, zyada se zyada 2-3 din baat nahi karte the, lekin ek katti ke baad abba bhi ho jata tha, aur ye definite hota tha ki katti ke baad to abba hoga hi hoga. हम बड़े हुए तो ईगोज भी बड़े हो गए। अब अब्बा होने में साल लग जाते हैं और कभी तो साल भी काम नहीं कर पाते। बचपन में अब्बा करना कितना सिंपल था ना, तूने ऐसा बोला था ना रौनक को, अब उसे सॉरी बोल, और एक सॉरी से ना सबका दिल पिघल जाता था। लेकिन अडल्टिंग में सॉरी कौन पहले बोलेगा, इसमें ही ईगो अटक जाता है। आपको नहीं लगता हमने बड़े होते होते खुद को और लाइफ को भी कॉम्प्लिकेट कर दिया है? बचपन में सिर्फ एक ही चीज कॉम्प्लिकेटेड लगती थी, एंड दैट वाज मैथमेटिक के सम्स, और अब सर से लेकर पांव तक कॉम्प्लिकेशन ही कॉम्प्लिकेशन। चलो अब इन कॉम्प्लिकेशंस की गुत्थियों को सुलझाते हैं, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और गाड़ी जब आगे बढ़ती है इस वक्त, तो मिड डे मोहब्बत की गाड़ी 90 के गियर में लग जाती है, और मैं आपसे कहती हूँ स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक,
3: गानों की ईदी मिर्ची इट्स हॉट। हॉट
5: बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद की सबको मुबारकबाद।

0: सेवैया खाइए और सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एसॉन्ट।
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मैडम, डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
3: हेलो, डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
4: एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़े यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
3: हेलो,
4: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए मैडम, डिस्टरबेंस अभी आ रही है।
3: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे?
4: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ, आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है, यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके, अभी भी आ रही है?
3: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
4: हैं मोबाइल पे
3: और क्या,
4: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
3: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
4: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
3: आपको बताना चाहिए था ना
4: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यार खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टरबेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
3: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते डिस्टरबेंस आ रही है, दिमाग खराब?
4: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
3: आपका दिमाग खराब,
4: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है, पहले डिसाइड करिए।
3: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
4: नवेद लिखिए, नवेद
3: आ रही है।
5: पायल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, डिस्टरबेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा, मैंने आपका मुर्गा बनाया, थोड़ा सा मजाक कर दिया आपके साथ।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate in style with R&B at the newly opened store and shop the latest trendy fashion across women, men and kids. And the celebration doesn't stop. Get free QAR 50 gift voucher on shopping of QAR 200. More fashion, more value, more reasons to shop today. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B. Love it. Wear it.
6: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।

रे। 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay, best rate, no stress. iPay wallet का भरोसा. Download कीजिए आज ही iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do this.

0: सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एहसास।
1: सारा जमाना है सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: घर पर नया नया सीडी प्लेयर आया था, सारे कजन इकट्ठे हुए थे और मौका था कि यार कोई नई फिल्म देखते हैं। पता हमने कौन सी फिल्म देखी? चाइना टाउन।
2: मिर्ची वीसीआर।
3: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, Chinatown was a film जिसको देख करना हमने बड़े मजे किए थे। Because of the reason कि यार ये फिल्म थ्रिलर भी थी और कॉमेडी भी थी। क्या हंसे थे और क्या घबराए थे, दोनों ही चीजें हमने एक साथ करके मिक्स्ड इमोशंस वाला जोन जो हो जाता है ना, वो हुआ था इस फिल्म को देखते हुए। लेकिन बिहाइंड द सीन की बात आपको बताती हूँ कि जब ये फिल्म लॉन्च हो गई थी, कि ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि ऐसी ऐसी एक फिल्म आने वाली है, सो उस वक्त जो कास्ट थी दैट वॉज अनिल कपूर, अक्षय कुमार, रानी मुखर्जी एंड विवेक ओबरॉय। लेकिन सारे के सारे स्टार्स जो थे ना, वो अपनी अपनी वजहों की वजह से ड्रॉप्ड आउट ऑफ द प्रोजेक्ट, जिसके चलते अक्षय खन्ना अनिल कपूर की जगह आए, शाहिद कपूर अक्षय कुमार की जगह आए, करीना कपूर रानी मुखर्जी की जगह आई एंड फाइनली उपेन पटेल जो थे ही वॉज रिप्लेस्ड बाय विवेक ओबरॉय। एंड ये उपेन पटेल की डेब्यू मूवी थी। सैडली उन्होंने लीड रोल में तो ऐसी कोई खास मूवी करी नहीं, लेकिन डेब्यू फिल्म में ही वो वायरल से हो गए थे, अपनी एक्टिंग की वजह से नहीं। एक्चुअली हुआ ये कि इस फिल्म के अंदर उपेन पटेल का जो नंबर दिया गया था, बोला गया था वो नंबर, दैट टर्न्ड आउट टू बी अ रियल नंबर, और वो भी मुंबई के किसी डॉक्टर का नंबर था, जिसको कि ये फिल्म रिलीज होने के बाद न जाने कितने कॉल्स आने लग गए थे कि वो बंदा जो है वो परेशान ही हो गया था। बेचारे उपेन फेमस भी हुए तो किस वजह से। खैर, पब्लिसिटी कैसी भी हो, पब्लिसिटी होती है, ये भी एक बात है। चलो जी, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: 89.6, 89.6,
2: it's hot.
5: मिर्ची गानों की ईदी, only on मिर्ची it's hot.

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तुझे पता है एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, ऐसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
4: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
5: मिर्ची इट्स हॉट
6: अर्ज किया है
7: इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
3: हाय, दिस सलमान खान और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक।
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
5: मिर्ची गानों की ईदी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: वैसे हमारी रगों में इतना बॉलीवुड दौड़ता है कि अगर कोई आ आ आ करता हुआ अटक जाएगा ना, तो हम उस बात को पूरा करते हुए कह देंगे, आशिकी में तेरी जज जज जाएगी जा मेरी।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड ये गाना क्या था मेरे यारा, चाइना टाउन का ये गाना वॉज अ हिट अपने जमाने का। बाय द वे, चाइना टाउन वॉज डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड ये फिल्म उनके सिग्नेचर स्टाइल में बनाई गई थी। और उनका सिग्नेचर स्टाइल पता है क्या है? वो ये है कि उनकी जितनी भी थ्रिलर्स आती है ना, उसका ट्विस्ट यही होता है कि हर एक इंसान जो कि उस फिल्म में नजर आ रहा होता है ना, हर एक इंसान के ऊपर हमारा शक जा रहा होता है कि यार ये भी मर्डरर हो सकता है। नहीं यार, मर्डरर तो ये लग रहा है, नहीं मर्डरर तो वो है, और फिर मर्डरर तो अंकल निकले। एंड इस फिल्म में ना सिर्फ अब्बास मस्तान का सिग्नेचर स्टाइल इस्तेमाल हुआ है, इस फिल्म में जो वो लैविश मैंशन दिखाया गया है, विच वॉज द चाइना टाउन विला नंबर 36, जहां पर कि वो मर्डर होता है, उसको बनाने के लिए भी बड़ा दिमाग लगाया गया था। एंड उस पूरे बंगले को स्पेशली इस मूवी के लिए बनाया गया था, और बहुत जबरदस्त तरीके से इस तरीके से उसको स्टाइल किया गया था कि ना उस बंगले से ना मिस्टीरियस वाइब्स आनी चाहिए, विच आई थिंक दे वर सक्सेसफुल इन डूइंग। लेकिन एक और बात ऐसी है इस फिल्म के बारे में जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, और वो ये कि उस दौर में सबसे एक्सपेंसिव गाना जो बना था वो चाइना टाउन का गाना था, जिसमें उपेन पटेल और ईशा कोप्पिकर हैं। उस गाने को बनाने के लिए 30 लाख रुपए लगाए गए थे, जो कि अच्छा खासा बजट था उस जमाने के हिसाब से। इनफैक्ट आज के टाइम पर भी होगा यार, वो अलग बात है कि आजकल 30 लाख रुपए में कोई फ्लैट नहीं आएगा, लेकिन हाँ 30 लाख रुपए में कोई अच्छी खासी हाई एंड मॉडल की गाड़ी जरूर आ जाएगी। वैसे तो यूजुअली कहते हैं कि पैसा बोलता है, लेकिन जब चाइना टाउन में एक गाने के लिए इतना पैसा लगाया गया तो पैसा भी गाने लगा ना। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मिर्ची गानों की ईदी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ईद की खुशियाँ मनाओ और मिर्ची की तरफ से कानों की ईदी ले जाओ।
1: एक कोने में था बैठा जब मुझे वो दिखी थी, वो सबसे अलग थी, वो सबसे हंसी, आंखें मेरी फिर उसकी आंखों से जमेली, एक बारी दो बारी फिर निकली हंसी, एक हाथ हवा विच दूजे च गिलास, ते मेनू नी पता सी गिलास च की, बट हौली हौली लक नू घुमा के नचदे लगे सो सेक्सी।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
4: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: आप
1: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।

रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 89.6 89.6 It's hot. मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: घर दे कम ना रुकणगे ओ जिम विच फट्टे चकांगे।

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Remembering the very talented actor Mukul Dev और हमारे बचपन का बहुत ही पॉपुलर टीवी शो घर वाली ऊपर वाली याद आया
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. आज इतने सारे चैनल्स और इतने सारे कंटेंट के बीच में ये एक शो मुझे बैठे बैठे याद आया when I was remembering मुकुल देव and I realized कि हाँ यार मुकुल देव ने भी तो हमें कितना हंसाया है ऑन स्क्रीन. द स्टोरी वॉज अबाउट घर वाली ऊपर वाली पापा एंड सनी, यानी कि पापा जिनका नाम रवि था इस सीरियल के अंदर, जो मुकुल देव ने प्ले किया था कैरेक्टर, उनकी एक करंट वाइफ होती है और एक वाइफ जो परलोक सिधार चुकी थी, जिनका की बेटा होता है सनी. और बेचारा रवि बीवी जिंदा हो या ना हो, दो बीवियों के बीच में फंस के कुट के रह जाता है, जहाँ से निकल के आती थी खूब सारी कॉमेडी एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स. ये एक ऐसा शो था जिसको कि बच्चे और बड़े साथ बैठकर एंजॉय किया करते थे. ऐसा नहीं था कि हम इस शो को अपने बड़ों की वजह से आदतन देखा करते थे और फिर ग्रेजुअली हमें ये पसंद आया था. नहीं, ये हमारी फर्स्ट चॉइस हुआ करती थी. इनफैक्ट बड़ों की भी फर्स्ट चॉइस हुआ करती थी. आई एम श्योर सारे के सारे फादर्स जब ये शो देखा करते होंगे ना, उनके दिल में काफी हद तक एक सॉफ्ट कॉर्नर रवि के लिए हुआ करता होगा. हे बाय द वे, आपको पता है इस सीरियल के अंदर जो बच्चा था सनी, जो अब बड़ा हो गया है, एंड बंदे का नाम इन रियलिटी इज मिक्की धमेजानी, जो कि डॉक्टर बन चुके हैं, ऑप्थमोलॉजिस्ट है बंदा. कितने सारे ऐसे चाइल्ड आर्टिस्ट है ना, जो बचपन में हमने कितने सीरियल्स और फिल्मों में देखे और उसके बाद आज उनका कहीं नामो निशानी नहीं है. ये उनमें से एक है जिनका नामो निशान मुझे मिल गया फाइनली. तभी तो आपके लिए मिड डे मोहब्बत पर लेकर आई. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: मुबारक ईद मुबारक.
0: It's hot, hot.
3: La la la la la.
0: बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद की सबको मुबारकबाद.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: रहे गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: उदित नारायण, अलका याग्निक और प्रशांत की आवाज में दिस गाना इज फ्रॉम द फिल्म फिजा, आजा माहिया। मैं इस गाने को जब कभी देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि यार ये भी एक टाइम था जब ऋतिक रोशन यूज्ड टू बी सो यंग। आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एजिंग ऑफ कोर्स, दैट इज टोटली नेचुरल बायोलॉजिकल, ये तो होता ही होता है। बट आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ द फैक्ट कि कितनी जल्दी वक्त जो है वो पलट गया। नहीं मतलब अभी ऐसा लगता है कि यार कुछ ही टाइम पहले की तो बात है जब ऋतिक रोशन ने अपनी डेब्यू फिल्म करी थी एंड एवरीबडी वॉज गोइंग क्रेजी अबाउट हिम, और आज सारे नए एक्टर्स आ गए हैं, लॉटी बदल गया यार एक्टर्स का। वक्त भी कैसे चुटकी बजा के गायब हो जाता है ना, पता ही नहीं लगता। चलो यार, इससे पहले कि ये वक्त भी निकल जाए, मैं आगे बढ़ती हूँ।
2: सारा जमाना सारा का दीवाना।
3: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आगे बढ़ते हुए मैं आपके लिए लेकर आती हूँ मान ना मान करो गानों की पहचान, जहाँ पर दो गानों को आपस में मिक्स करके मैं आपके लिए सुना देती हूँ और आपको पहचानना होता है कि ये दो गानों की जो धुनें आपने सुनी है ये कौन से गानों की है। तो जी, आज का जो मिक्स है वो है कुछ यूं।

0: बस जी डीएम कर दो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, अपना नाम, अपने शहर का नाम और इन दोनों गानों के नाम लिखकर मुझे भेज दो और स्टे ट्यून्ड रहो विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तुझे पता है एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
4: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रहे गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
3: Hi everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: This is Mirchi and it's hot. आप सबको ईद मुबारक।
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
0: Mirchi गानों की ईदी Only on Mirchi. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: जितना जितना मैं दुनिया को समझती जा रही हूँ ना, मुझे एक और बात समझ में आ रही है कि राजेश रोशन के लिए ना एक गाना मेरी तरफ से होना चाहिए, एंड दैट इज कॉपी ना किया तो बोलो ना बोलो क्या किया।
2: Mirchi, Thugs of Filmistan.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और वक्त के साथ साथ मुझे ये भी समझ में आ रहा है मेरे यारा कि यार हम कहां अन्नू मलिक और प्रीतम दा को ही हमेशा उंगलियों से पॉइंट आउट करते हुए बोल रहे होते हैं कि इन्होंने कॉपी किया। अरे बहुत सारे लोग हैं जिनमें से राजेश रोशन भी एक ऐसे इंसान है जो अक्सर अपने गानों का कॉम्पोजिशन कहीं इधर उधर से लेकर आते हैं। एंड द सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म क्रिश, कौन सा गाना? ऑफ कोर्स अब तक तो आपको पता लग ही गया होगा, लेकिन फिर भी आपको सुना देती हूँ। Well, इसका म्यूजिक इज टेकन फ्रॉम अ टर्किश फोक सॉन्ग जिसका नाम था सेडन डेडन, एंड दिस सॉन्ग वॉज एक्चुअली कम्पोज बाय अ बैंड जिनका नाम था मेहतर। बट आई मस्ट टेल यू अबाउट द ओरिजिनल गाना बिकॉज ये एक 20th सेंचुरी का कॉम्पोजिशन है, ऑफकोर्स बिकॉज इट्स अ टर्किश फोक सॉन्ग। तो ये ऑटोमन मिलिट्री के लिए म्यूजिक बनाया गया था किसी जमाने में, और उसी म्यूजिक का रिवाइवल किया था मेहतर बैंड ने, जो कि ऑफकोर्स राजेश रोशन ने सुना और फिर दिल ना लिया। स्टे ट्यून विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन Mirchi, इट्स हॉट।
3: Mirchi गानों की ईदी, ओनली ऑन Mirchi, इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
4: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
5: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
4: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
3: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi, it's hot.
0: Mirchi, Ganuki, Edi. Only on Mirchi, it's hot.

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 89.6 89.6 मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 89.6 89.6 मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: There was this moment in K3G जब करीना कपूर ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन तहे दिल से चाहती थी कि पू बनी पार्वती अब ये हो ही जाए, लेकिन वो इतनी डेस्परेट थी कि वो ऐसा कर जाएंगी, ये तो हमें करण ने ही बताया।
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का फिटारा। एंड जब K3G की शूट हो रही थी, at that time, करण जौहर ने एक इंटरव्यू में बताया कि there was this scene, आपको और मुझे, हम दोनों को ये सीन याद है बहुत अच्छी तरीके से, जब शाहरुख खान और जया बच्चन एक दूसरे से सालों बाद मिलते हैं थैंक्स टू ऋतिक रोशन। एंड होता ये कि दूर से काजोल इज वॉचिंग, दूर से ऋतिक रोशन इज वॉचिंग, एंड देर इज अ करीना कपूर ऑल्सो इन द फ्रेम हु इज वॉचिंग, यू नो, यहाँ माँ बेटे जो है वो इतने सालों बाद मिल रहे हैं। काजोल के इमोशन जस्टिफाइड, ऋतिक रोशन के इमोशन जस्टिफाइड, लेकिन पू, यू नो व्हाट रियली हैपेंड वाज कि जब ये सीन शूट हो रहा था, एट दैट टाइम करण जौहर ने पहले ही बोल दिया था कि यू नो, मतलब बहुत ज्यादा रोना नहीं है लेकिन रोना है। और जैसे ही करण जौहर ने बोला एक्शन, तो करीना कपूर भय करके रोने लग गई, जिसपे करण जौहर को थोड़ी देर बाद बोलना पड़ा कि तुम क्यों इतना रो रही हो, वो तुम्हारा भाई नहीं लगता, वो तुम्हारे पापा नहीं लगते, तो why is it that तुम्हारा कैरेक्टर इतना रो रहा है। जिसका कमबैक जवाब करीना कपूर ने करण जौहर को ये दिया कि आई एम एन एक्टर नाउ, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, बिकॉज देयर वर एक्टर्स लाइक अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, काजोल हु वर देयर इन द फ्रेम्स ऑफ कॉज। करीना को लगा कि यार मैं कब एक्टिंग करके बताऊंगी, यार इस पू के अंदर जो पार्वती है वो आखिर कब तक चुप बैठेगी, फाइनली एक दिन तो उसको निकल कर आना ही है। तो करीना ने सोचा कि आज ही शायद वो दिन है, बट नॉट रियली, आई मीन ऑफ कोर्स उसको रीशूट किया गया एंड देन थोड़े बहुत करीना के इमोशंस दिखाए गए ऑन स्क्रीन, नॉट द बाल्टी भर के रोना वाला सिनेरियो। हाँ, अब एक बात बताओ, आप अपने बॉस को अपने काम को लेकर इतना जस्टिफाई करते हो जितना करीना कपूर जस्टिफाई करने चली थी? डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा, और अभी के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मिर्ची गानों की ईडी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बजाते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
3: अथॉरिटी से बनवाया था, शेख सराय से।
2: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
3: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
2: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
3: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
2: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
3: तो कोई बात नहीं होती, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
2: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
3: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
2: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
3: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
2: नहीं, मेरे को दिए आपने?
3: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
2: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया।
3: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
2: अरे उन्होंने क्या कहा था यार, उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चालान कट जाएगा। ठीक है
3: साहब जी, कोई ऐसे तो गलत बात है साहब जी, कैसे ऐसे कैसे हो सकता है?
2: ऐसे कैसे हो सकता है यार, उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
3: सर मैं दलाल से बात करूंगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
2: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछो भाई।
3: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, हमको कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है चल जाएगा, सबका बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं।
2: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
3: हाँ जी।
2: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं, मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं। गलती होगी साहब जी, कान पकड़,
3: पकड़ ले।
2: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: घर दे कम ना रुकणगे, ओ जम विच फट्टे चकांगे।
6: यू बेटर वॉच हर।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: डियर सोशल मीडिया और फोन के चुराए हुए वक्त,
4: यादों को चिट्ठी।
3: तुम्हारी बड़ी याद आती है यार, वो दिन जब हम बेफिक्र होकर गलियों में खेला करते थे, जब दोस्तों से मिलने के लिए घर के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे, जब बातचीत आंखों में देखकर होती थी और जब हंसी का शोर सिर्फ दिलों तक नहीं पूरे माहौल में गूंजता था। तब शामें छतों पर कटती थी, तारों को निहारते हुए सपने बुने जाते थे, किताबों के पन्नों की खुशबू में घंटों डूबे रहते थे और खत लिखना वो एक एहसास हुआ करता था। हर एक लव्ज में इमोशंस जिंदा रहते थे। आज फोन की स्क्रीन पर उंगलियां चलती हैं, पर रिश्तों में पहले जैसी गहराई नहीं है यार। दोस्त ऑनलाइन तो हैं, लेकिन पास नहीं। दिल की बातें अब स्टेटस में बदल गई हैं और खुशियों को लाइक्स और कमेंट्स में गिनने लगे हैं। मेरे प्यारे स्मार्टफोन और सोशल मीडिया में खोए हुए वक्त, दिल आज भी तुम्हारी तलाश में ही है। काश फिर से वो दिन लौट आए जब हम सच में जिया करते थे, ना कि सिर्फ ऑनलाइन मौजूद रहते थे। तुम्हारी याद में खोई हुई इंसान, तुम्हारी सारा, जो आज भी तुम्हारी राह तकती है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: आ गए ना सब पार्टी में, अब खींच रहे फोटो किस सिक करके।

0: पार्टी आपकी तरफ से और सेलिब्रेशन खास बनाने के लिए दानों की ईदी मिर्ची की तरफ से।
1: oh no!

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तुझे पता है एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, ऐसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
4: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
7: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
8: दिस इज तापसी पन्नू, आप सभी को ईद मुबारक।
9: इट्स हॉट।
6: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
7: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
5: Only on 89.6 मिर्ची 1। It's hot.
0: मिर्ची गानों की ईदी। Only on मिर्ची, it's hot.

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में ओम शांति ओम से ये गाना गूजबम्स दे देता है यार।
4: मिर्ची 90s कैसेट।
3: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा एंड वेल गूजबम्स तो इस गाने ने दिए हैं एंड आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द म्यूजिक जो कि विशाल शेखर ने कंपोज किया है। बिकॉज यू नो देर आर टाइम्स जब आप इस गाने को सुन रहे होते हो और पूरे खो जाते हो उस गाने को सुनते सुनते ना, तो द म्यूजिक टेक्स यू टू अ डिफरेंट वर्ल्ड। आई डोंट नो हाउ डज म्यूजिक हैज दैट मैजिक टू टेक यू टू अ डिफरेंट वर्ल्ड बट येस इट डज हैपन। ऊपर से सोने पे सुहागा आर द लिरिक्स ऑफ दिस गाना, वेल ब्यूटिफुल लिरिक्स आई मस्ट से। एंड ये जो लिरिक्स है ना इस गाने के, ये क्लियरली इस बात को दर्शाते हैं कि जब आपको कोई इंसान या कोई चीज या कोई सिचुएशन भी ले लो यार, बहुत पसंद आ रही होती ना बहुत ज्यादा, तो आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि आप उसे एक्सप्लेन कैसे करो कि ये कितना अच्छा लग रहा है या कितना खूबसूरत लग रहा है। और इस गाने में जब बंदा बंदी के लिए ये लाइंस गा रहा है ना कि तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी जुबा में भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सको। ओए होए, मैं आपको सच बात बताऊं, ये फीलिंग मुझे कब आई है, प्यार मोहब्बत में नहीं आई है। अक्सर ऐसा होता है ना कि रात के अंधेरे में आप छत पर चढ़ जाते हो और चांद देख रहे होते हो, एंड मेरे साथ तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि चांद को देखने के बाद ना एक अलग ही एनर्जी आती है बॉडी के अंदर। और एक टाइम ऐसा आता है जब आप आसमान में चांद तकते रहते हो ना, आपको वो चांद इतना खूबसूरत लग रहा होता है, इतना खूबसूरत लग रहा होता है कि आपका दिल कर रहा होता है कि इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है और मैं इस बात को किस तरीके से बयां करूं कि चांद कितना खूबसूरत है। और तभी ये लाइंस मेरे दिमाग में भी अक्सर आई है कि तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कि यार तुम दिख तो रहे हो आसमान में, तुम्हें देख तो रही हूँ मैं, लेकिन तुमको पाकर भी मैं एक तरीके से तुम्हारे अंदर खो चुकी हूँ। और अगर मैं कहना भी चाहूँ ना तो मुझे नहीं समझ में आता कि मैं किस जुबान में ये बात कहूँ, क्योंकि मेरे पास लफ्ज नहीं होते हैं कि चांद कितना खूबसूरत लग रहा होता है। इनफैक्ट हर बार मैंने एक कोशिश करी है कि अपना फोन निकाला है और उस चांद की खूबसूरती को कैप्चर करने की कोशिश की है, लेकिन मेरे पास क्या, फोन की लेंस के पास भी वो जुबान और वो नजरे ही नहीं है कि वो उसकी खूबसूरती को जिस तरीके से वो आसमान में नजर आ रहा होता है ना अपने लेंस में कैप्चर कर पाए। अब बताओ आपके साथ कभी ऐसा हुआ है चांद को लेकर? इंसान को लेकर तो अक्सर इंसान के साथ ऐसा होता ही होता है। तो चलो दोनों में से जो भी आपके साथ पहले हुआ है या हुआ है DM कर दो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, उसका जिक्र करते हुए। और अभी फिलहाल के लिए यही गाना चलाते हुए मैं यहाँ से जाती हूँ और आपसे कहती हूँ हम है राही प्यार की, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी यहाँ के अलावा मैं मिल ही जाऊंगी आपको ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
4: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
3: वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,

0: गांजा भी न पीते ही मुझे तो यार चढ़ने लगी।
1: ईद की वाइब सेट हो गई है, मिर्ची पर गानों की ईदी जो मिल रही है।
2: गुरु।
3: बोहेमिया।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: मिर्ची घड़ी में शाम के बज गए 4।
2: Time check in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अरे आज तो कोने कोने में बस एक ही गूंज और एक ही शोर है कि ईद का जश्न धूमधाम से हर जगह मनना ही चाहिए। वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू कतर नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची इट्स हॉट। आप सभी को ईद अल अधा की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस वक्त अगर कतर को देखने की कोशिश करें तो ढेर सारे प्रोमिनेंट मॉल्स में बहुत सारे एक्साइटिंग इवेंट सबके लिए लाइन अप है। सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर? बच्चे बूढ़े और जवान सबके लिए कुछ ना कुछ खास जो है जरूर मिलेगा। जाइए इंडोर एक्टिविटीज को जरा एंजॉय करके आइए, उसके बाद घर पे जो खास दावत रखी जाए उसमें हमें जरूर याद करिए। स्टेडियम टू मिर्ची इट्स हॉट।
2: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
3: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
1: जी कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
3: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
1: मीसम नाम है।
3: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
1: 1200 रुपए।
3: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
1: हाँ जी, 1st September 1980।
3: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
1: जी
3: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
1: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
3: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
1: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
3: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
1: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
3: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछनी है ना आपको, क्या पढ़ी है उसके पीछे पढ़नेगी। तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
1: सर
4: इतना गुस्सा मत होइए सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे आप ही की गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पायल ने, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
1: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
4: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ
1: पिटोगे,
4: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को,
1: कुकड़ों को, कुकड़ों को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मरहबा दोहा, समथिंग बिग हैज जस्ट ओपन्ड एट दोहा सिटी सेंटर। योर फेवरेट फैशन ब्रांड R&B हैज ओपन्ड अ न्यूअर, बिगर एंड ग्रेटर फैशन डेस्टिनेशन एट दोहा सिटी सेंटर। सेलिब्रेट इन स्टाइल विद R&B एट द न्यूली ओपन स्टोर एंड शॉप द लेटेस्ट ट्रेंडी फैशन अक्रॉस विमेन, मेन एंड किड्स। एंड द सेलिब्रेशन डजंट स्टॉप, गेट फ्री QAR 50 गिफ्ट वाउचर ऑन शॉपिंग ऑफ QAR 200। मोर फैशन, मोर वैल्यू, मोर रीजंस टू शॉप टुडे। हेड टू द न्यूली ओपन्ड R&B स्टोर एट दोहा सिटी सेंटर, सेकंड फ्लोर टुडे। R&B, लव इट, वेयर इट।
5: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस, सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: Mirchi Gano ki Eidi. Only on Mirchi, it's on.

0: ईद की पार्टी आपकी तरफ से और सेलिब्रेशन खास बनाने के लिए दानों की ईदी मिर्ची की तरफ से।
1: Yeah, the meat bros. Just tell me.

पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाय ही उसकी गलती है। रुक तो जा तू है कौन, ये तो बता तू है कौन।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
2: अरे सूरज चाचू, हम सब तो छुट्टियां मना ही रहे, आप भी जरा छुट्टियां मना के आ ही जाएं।
3: मिर्ची अंशु मिर्ची अंशु मिर्ची अंशु मिर्ची अंशु।
2: Hey, welcome back. You're listening to Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi, and this is RJ Anshu with you. Well, इस वक्त अगर कतर को देखने की कोशिश करें तो भाई साहब, अगर कोई मौसम है तो वो है छुट्टियों का मौसम, ईद अल अधा की ये खूबसूरत छुट्टियों का मौसम। एंड बस इसके चलते कहीं कुछ हो रहा है तो वो है हर घर में जश्न, साथ ही कतर के कोने कोने में ये माहौल जो है हम जरूर फील कर सकते हैं। तो भैया, जब हम सब कोई इतने व्यस्त हैं इस अच्छे से मौसम को जीने में, यानी ये छुट्टियों को अच्छी तरह से बिताने में, तो मेरा इतना ही कहना है कि सूरज चाचू, आपको एक्स्ट्रा काम करने का क्या ही दिल कर रहा है, जरा आप भी छुट्टियां मना के आ ही जाएं।
4: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
1: वेदर अपडेट।
2: लेकिन ना ना, इन्होंने तो मेरी बात ना ठानने का पूरी तरह से मान ही लिया है। जब जब हमारी छुट्टियां होती है ना, ये जो है काम में जरा ज्यादा लग जाते हैं। जरा देखिए, अभी गर्मी की छुट्टियां आएंगी और ये जो है कितना ज्यादा काम करेंगे। वैसे अगर आज के मैक्सिमम टेम्परेचर की मैं बात करूं, सो इट इज गोइंग टू बी अराउंड 44, मिनिमम इज गोइंग टू बी अराउंड 32। बहुत ज्यादा ख्याल रखें, गर्मी ग्रेजुअली बढ़ती ही जा रही है। खुद को हाइड्रेटेड रखना है एंड दिमाग इन कलेजे की ठंडक के लिए एक ही काम करना है, सुनते रहना है कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची इट्स हॉट। बंदी का नाम अंशु।
1: Weather check brought to you by RSL Group of Company. Ab pao Qatar mein delivery riders or driver ki job. For bright future, call now 3100813.
0: Mirchi Gano ki Eidi. Only on Mirchi, it's hot.

रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 89.6 मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

लटीना चिकन चमेले कट कटरीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यूं तो किया बर्बाद है तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तुझे पता है एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
4: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
7: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
8: Hi Mirchi listeners, this is Jacqueline Fernandez.
9: Wishing all of you guys a very very Eid Mubarak.
10: It's hot.
6: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
7: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
5: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अरे आपकी और हमारी जोड़ी ये किसी तारे सितारे से कम थोड़ी ना है। वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची इट्स हॉट। सबसे पहले आप सभी को ईद अल अदा की बहुत सारी मुबारकबाद। अगर लगे कि आसमान में टिमटिमाते हुए तारों को इस वक्त देखना है तो सीधा कहीं पहुंचना है तो उस जगह का नाम है कटारा कल्चरल विलेज। 27, 28, 29 तीनों दिन ठीक रात 8:30 बजे अगर आप कुछ विटनेस कर पाएंगे तो वो है फायरवर्क्स, जिसका होता है हम सभी को बेसब्री से इंतजार। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, बस अपनी पलटन को लेकर वहां पहुंचने की तैयारी करें, बाकी मिठाइयां खाते रहें, बांटते रहें, साथ ही खुशियां जो हैं वो फैलाते रहें। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मिर्ची गानों की ईदी, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: ईद की पार्टी आपकी तरफ से और सेलिब्रेशन खास बनाने के लिए गानों की ईदी मिर्ची की तरफ से।
1: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी, आग लगेगी, आग लगेगी।

0: की पार्टी आपकी तरफ से और सेलिब्रेशन खास बनाने के लिए गानों की ईदी मिर्ची की तरफ से।
1: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: भसड़ मचा रखी है, रानी भसड़ मचा रखी है।
1: सुनते रहिए गानों की ईदी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: घर दे कम ना रुकणगे, ओ जिम विच फट्टे चकांगे,
3: यू बेटर वॉच हर।

0: मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026. एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. पावर्ड बाय iPay. बेस्ट रेट, नो स्ट्रेस. iPay वॉलेट का भरोसा. डाउनलोड कीजिए आज ही iPay, द बेस्ट रेमिटेंस रेट इन कतर.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 5. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन. इट्स हॉट.
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल.

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Mirchi Ganuki Eidi. Only on Mirchi. It's hot.

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: द होल थिंग इज दैट रुपया सबसे बड़ा है भैया. अब जब एक्सचेंज के रेट्स इतने कमाल हो तो पैसे को हम सर आंखों पे ना बिठाएं तो किसे ही बैठाएं. हैविंग सेड दैट आईपी मनी में अच्छे एक्सचेंज रेट्स का बोलबाला है. अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.13, पाकिस्तानी रुपीज 76.89, बांग्लादेशी टाका 33.67, नेपाली रुपीज 41.79 एंड इसके साथ ही श्रीलंकन रुपीज 88.27. तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां. लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची इट्स हॉट. एंजॉय.

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: मैडम, डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
1: हेलो, डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
2: एक सेकंड रुकिए। छोटू, नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ, नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
1: हेलो,
2: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए। मैडम, डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
1: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे?
2: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है। यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके, अभी भी आ रही है?
1: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
2: है मोबाइल पे
1: और क्या?
2: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
1: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
2: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
1: आपको बताना चाहिए था ना
2: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यहाँ खम्बे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टरबेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
1: आप खम्बे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते हैं डिस्टरबेंस आ रही है, दिमाग खराब?
2: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
1: आपका दिमाग खराब,
2: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है, पहले डिसाइड करिए।
1: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
2: नवेद लिखिए, नवेद
1: आ रही है।
3: पायल, में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। डिस्टरबेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोटा सा मजाक कर दिया आपके साथ।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate in style with R&B at the newly opened store and shop the latest trendy fashion across women, men and kids. And the celebration doesn't stop. Get free QAR 50 gift voucher on shopping of QAR 200. More fashion, more value, more reasons to shop today. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B. Love it. Wear it.
4: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs सिर्फ making charges pay करके. और अब एक और great news, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
5: घर दे कम ना रुकणगे, ओ जिम विच फट्टे चकांगे।
6: You better watch her shine.

0: रे। 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: Mirchi gaano ki eedi. Only on Mirchi. It's hot.
2: Come on.

ईद की पार्टी आपकी तरफ से और सेलिब्रेशन खास बनाने के लिए गानों की ईदी मिर्ची की तरफ से।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तुझे पता है एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
4: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate in style with R&B at the newly opened store and shop the latest trendy fashion across women, men and kids. And the celebration doesn't stop. Get free QAR 50 gift voucher on shopping of QAR 200. More fashion, more value, more reasons to shop today. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B. Love it. Wear it.
2: कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है। क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
3: तो इंतजार खत्म। RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
2: अभी कॉल करें 3100-0813।
4: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
5: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
6: हाय दोस्तों, मैं हूं मीका सिंह और मेरी तरफ से आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
4: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
5: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
7: Only on 89.6 मिर्ची 1। It's hot।
0: मिर्ची गानों की ईदी। Only on मिर्ची, it's hot।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
2: देखो कतर का कोना कोना आज तो बस एक ही बात कह रहा है कि आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद अल अधा बहुत बहुत मुबारक। जिंदगी में खुशियां तो आएंगी, साथ ही घर में शीर कोरमा भी आएगा। इतना ही कहना है कि दोस्त यारों के साथ आज के दिन को खूब अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें, परिवारजन के साथ बहुत सारा वक्त स्पेंड करें। इसके अलावा अगर दिल करे क्या ही करें, कहां ही जाएं, तो बस सारे अपडेट्स के लिए टिक के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: चले जी, आसमान के टिमटिमाते हुए तारों को जरा देख ही लें। ईद अल अधा आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। इस वक्त अगर कतर को देखने की कोशिश करें तो कोने कोने से बस ईद अल अधा की गूंज जो है वो जरूर सुनाई दे रही है। एंड अगर लगे कि क्या कुछ खास किया जाए तो शाम के वक्त सीधा अगर आपको कहीं पहुंचना है तो उस जगह का नाम है कटारा कल्चरल विलेज, जहां 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ढेर सारे एंटरटेनिंग इवेंट्स जो है आपके लिए जरूर लाइंड अप है। कतर के कल्चर एंड ट्रेडिशन को करीब से जान पाएंगे, लेकिन इसके साथ कुछ तो और खास है जो जरूर आप देख पाएंगे। क्या है ये सब कुछ जानने के लिए टिक के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची इट्स हॉट।
2: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: घर दे कम ना रुकन गे ओ जिम विच फट्टे चकांगे।
2: You better watch her shine।

0: 1800 and get ready to shine.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 6. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट.
0: Time check
2: in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Mirchi Ganuki Idi. Only on Mirchi, it's hot.

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: देखो कतर का कोना कोना आज तो बस एक ही बात कह रहा है कि आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, ईद अल अधा बहुत बहुत मुबारक। जिंदगी में खुशियां तो आएंगी, साथ ही घर में शीर कोरमा भी आएगा। इतना ही कहना है कि दोस्त यारों के साथ आज के दिन को खूब अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें, परिवारजन के साथ बहुत सारा वक्त स्पेंड करें। इसके अलावा अगर दिल करे क्या ही करें, कहां ही जाएं, तो बस सारे अपडेट्स के लिए टिक के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची इट्स हॉट।
2: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate in style with R&B at the newly opened store and shop the latest trendy fashion across women, men and kids. And the celebration doesn't stop. Get free QAR 50 gift voucher on shopping of QAR 200. More fashion, more value, more reasons to shop today. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B. Love it. Wear it.
2: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
3: घर दे कम ना रुकणगे ओ जिम विच फटे चकांगे।
4: You better watch her shine।
3: टारगेट पूरे करणगे हुण बदले रूल जमाने दे।
4: You better watch her shine।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga. Naveed wala murga. Mirchi murga.
2: हेलो
3: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
2: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
3: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पहुंचा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
2: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो अभी तो बताओ।
3: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
2: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है
3: अंदर, तो आ गया हूँ।

0: किसानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एहसास।
1: चले जी, आसमान के टिमटिमाते हुए तारों को जरा देख ही लें। ईद अल अधा आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। इस वक्त अगर कतर को देखने की कोशिश करें तो कोने कोने से बस ईद अल अधा की गूंज जो है वो जरूर सुनाई दे रही है। एंड अगर लगे कि क्या कुछ खास किया जाए तो शाम के वक्त सीधा अगर आपको कहीं पहुंचना है तो उस जगह का नाम है कटारा कल्चरल विलेज, जहां 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ढेर सारे एंटरटेनिंग इवेंट्स जो है आपके लिए जरूर लाइंड अप है। कतर के कल्चर एंड ट्रेडिशन को करीब से जान पाएंगे, लेकिन इसके साथ कुछ तो और खास है जो जरूर आप देख पाएंगे। क्या है ये सब कुछ जानने के लिए टिक के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची इट्स हॉट।
2: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
3: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
4: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
5: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, ऐसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
6: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
2: मिर्ची इट्स हॉट।
7: अर्ज किया है
8: इरशाद इरशाद।

ईद की पार्टी आपकी तरफ से और सेलिब्रेशन खास बनाने के लिए गानों की ईदी मिर्ची की तरफ से।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अरे खुद के लिए तो हर कोई जीता है, औरों के लिए जिए तो कोई बात है। वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची इट्स हॉट। वेल, सबसे पहले आप सभी को ईद अल अधा की दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद, और इतना ही कहना चाहेंगे कि क्यों ना इस ईद एक कोशिश आप और हम मिलकर जरूर करें कि अपनी जिंदगी में जो खुशियां हैं उनमें से किसी और की जिंदगी को रोशन करने की कोशिश बस करते रहें। वो कहते हैं ना, खुद के लिए जिया तो क्या जिया, औरों के लिए कुछ किया तो समझो बहुत कुछ किया और दिल से बस जी ही लिया। तो बस यही कोशिश करें कि आज किसी के लिए कुछ तो कर दें, किसी के चेहरे जरा सी मुस्कान ही ला दे, या तो फिर अपने पास में जो बहुत कुछ है उसमें से थोड़ा किसी और की जिंदगी को रोशन करने के लिए बस हम ले ही चलें। क्या कहती पब्लिक? स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मुबारक ईद मुबारक,
3: गानों की ईदी ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

मिर्ची की तरफ से ईद की दिली मुबारकबाद। ईद मनाओ गानों की ईदी के साथ।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 7. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट.
2: Time checks in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical.

0: मटकाना।
1: Get ready to shine।
2: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 7। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Mirchi Ganuki Eidi. Only on Mirchi. It's hot.

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
2: देखो कतर का कोना कोना आज तो बस एक ही बात कह रहा है कि आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद अल अधा बहुत बहुत मुबारक। जिंदगी में खुशियां तो आएंगी, साथ ही घर में शीर कोरमा भी आएगा। इतना ही कहना है कि दोस्त यारों के साथ आज के दिन को खूब अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें, परिवारजन के साथ बहुत सारा वक्त स्पेंड करें। इसके अलावा अगर दिल करे क्या ही करें, कहां ही जाएं, तो बस सारे अपडेट्स के लिए टिक के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची इट्स हॉट।
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: हेलो भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
2: अथॉरिटी से बनवाया था, शेखराय से।
1: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
2: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
1: किस दलाल से बनवाया था आपने? नाम याद है उसका?
2: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
1: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: तो कोई बात नहीं होती, कैंसिल हम दलाल को, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
1: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
2: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
1: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
2: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
1: नहीं, मेरे को दिए आपने?
2: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
1: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
2: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
1: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चला निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए, आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
2: सर मैं दलाल से बात करूंगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा
1: कैंसिल? मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई।
2: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने ज्यादा कुछ कहा नहीं हमको, कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा था बस ठीक है चल जाएगा, सबका बनाते हैं, कितने सालों से बना रहे हैं।
1: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
2: हाँ जी।
1: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: गलती होगी साहब जी,
1: गलती होगी साहब जी। कान पकड़
2: पकड़ ले,
1: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार। इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate in style with R&B at the newly opened store and shop the latest trendy fashion across women, men and kids. And the celebration doesn't stop. Get free QAR 50 gift voucher on shopping of QAR 200. More fashion, more value, more reasons to shop today. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B. Love it. Wear it.
3: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs सिर्फ making charges pay करके. और अब एक और great news, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
4: ਹਰ ਦੇ ਕਮ ਨਾ ਰੁਕਣਗੇ ਉਹ ਜਮ ਵਿੱਚ ਫੱਟੇ ਚੱਕਾਂਗੇ।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: Mirchi Gano ki Eidi. Only on Mirchi, it's hot.

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: चले जी, आसमान के टिमटिमाते हुए तारों को जरा देख ही लें। ईद अल अधा आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। इस वक्त अगर कतर को देखने की कोशिश करें तो कोने कोने से बस ईद अल अधा की गूंज जो है वो जरूर सुनाई दे रही है। एंड अगर लगेगी क्या कुछ खास किया जाए तो शाम के वक्त सीधा अगर आपको कहीं पहुंचना है तो उस जगह का नाम है कटारा कल्चरल विलेज, जहां 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ढेर सारे एंटरटेनिंग इवेंट्स जो है आपके लिए जरूर लाइंड अप है। कतर के कल्चर एंड ट्रेडिशन को करीब से जान पाएंगे, लेकिन इसके साथ कुछ तो और खास है जो जरूर आप देख पाएंगे। क्या है ये सब कुछ जानने के लिए टिक के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची इट्स हॉट।
2: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तुझे पता है एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, ऐसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
4: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
5: मिर्ची इट्स हॉट। मरहबा दोहा, समथिंग बिग हैज जस्ट ओपन्ड एट दोहा सिटी सेंटर। योर फेवरेट फैशन ब्रांड R&B हैज ओपन्ड अ न्यूअर बिगर एंड ग्रेटर फैशन डेस्टिनेशन एट दोहा सिटी सेंटर। सेलिब्रेट इन स्टाइल विद R&B एट द न्यूली ओपन स्टोर एंड शॉप द लेटेस्ट ट्रेंडी फैशन अक्रॉस विमेन मेन एंड किड्स। एंड द सेलिब्रेशन डजंट स्टॉप, गेट फ्री QAR 50 गिफ्ट वाउचर ऑन शॉपिंग ऑफ QAR 200। मोर फैशन, मोर वैल्यू, मोर रीजंस टू शॉप टुडे। हेड टू द न्यूली ओपन्ड R&B स्टोर एट दोहा सिटी सेंटर, सेकंड फ्लोर टुडे। R&B, लव इट, वेयर इट।
6: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
7: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
8: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
9: हाय सलाम कतर, दिस इज दिशा पाटनी ऑन 89.6 मिर्ची ऑनलाइन कतर एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी ईद। ईद मुबारक।
7: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
8: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
0: Mirchi Ganu ki Eidi. Only on Mirchi. It's hot.

I love you all. दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: बजाते रहे गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिब्लिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
4: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
5: वीडियो गेम्स हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
4: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
3: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi, it's hot.

0: आपकी और हमारी जोड़ी ये किसी तारे सितारे से कम थोड़ी ना है। वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, इट्स हॉट। सबसे पहले आप सभी को ईद अल अदा की बहुत सारी मुबारकबाद। अगर लगे कि आसमान में टिमटिमाते हुए तारों को इस वक्त देखना है तो सीधा कहीं पहुंचना है तो उस जगह का नाम है कटारा कल्चरल विलेज। 27, 28, 29 तीनों दिन ठीक रात 8:30 बजे अगर आप कुछ विटनेस कर पाएंगे तो वो है फायरवर्क्स, जिसका होता है हम सभी को बेसब्री से इंतजार। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, बस अपनी पलटन को लेकर वहां पहुंचने की तैयारी करें, बाकी मिठाइयां खाते रहें, बांटते रहें, साथ ही खुशियां जो हैं वो फैलाते रहें। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची गानों की ईदी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: बज चुके हैं रात के 8, पुरानी जीन सुन रहे हैं आप मिर्ची पे।
2: Time check in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। बंदी का नाम है आरजे कनिका और अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां
0: मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका और अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन की।

मोर तो सीधा शुरुआत करते हैं हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। मिका सिंह दहिया द रैपर का गाना, गाने का नाम है छोरी। दो हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, छोरी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद आदित्य रिखारी, रैवट और कुटले खां का गाना अ कोक स्टूडियो सॉन्ग, गाने का नाम है ए अजनबी। पिछले हफ्ते से ये गाना दो पोजिशन नीचे ड्रॉप हुआ है। ए अजनबी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। छोरी ऑन नंबर 10, ए अजनबी ऑन गाना नंबर 9, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: के साथ ऑन मिर्ची।
1: यू आर लिस्टिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। गाना नंबर 9 पर हमने आदित्य रिखारियन कुटले खां को एक गाने में सुना। आदित्य रिखारी हु इज द पॉप सेंसेशन। कुटले खां राजस्थान के फोक म्यूजिक को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो इतने अलग दुनिया के आर्टिस्ट सिर्फ कोक स्टूडियो ही एक गाने में ला सकता है। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो एक नई एंट्री है एंड दिस इज अ डेब्यू जो हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे बिकॉज अदनान सामी इज बैक विद अ न्यू सॉन्ग। अदनान सामी के गानों के बारे में हम जैसे ही सोचते हैं तो वो पावरफुल रोमांटिक बैलेड्स याद आते हैं।

0: आदित्य रिखारी, रैबिट और कुटले खां का गाना, इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। गाने का नाम है ए अजनबी। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हो गए। दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10।

0: बट जो उनका नया वाला गाना है, इट्स अ हाई एनर्जी पॉप प्रोडक्शन. रस्टिक इंडियन टेक्सचर्स भी हैं, थोड़े राजस्थानी इन्फ्लुएंसेस भी हैं, बट इट्स ऑल दैट अदनान सामी इज वेरी वर्सेटाइल. गाने का नाम एक्चुअली लिपस्टिक है. पूरा गाना हम अभी आपके लिए प्ले करने वाले हैं. दिस सॉन्ग इज ट्राइंग टू ब्रेक द स्टिग्मा अराउंड लिपस्टिक, स्पेशली हमारी इंडियन सोसाइटी में, जहाँ थोड़ी बोल्ड लिपस्टिक लगा लिया, रेड शेड ज्यादा रेड हो गया तो ऑफिस में ही चार लोग टोक देते हैं. गाने की जो म्यूजिक वीडियो है, फीचर्स वुमेन ऑफ ऑल जेनरेशंस, older women, small town characters. You will see someone you know in this music video. But the best part is how Adnan Sami is fully playing a character in the video. Expressive styling, very transformed look. Unke surme pe dhyan dena. But gana unhone bahut fun banaya aur bahut waqt ke baad hum ek aisa high peppy pop gana sun rahe hain from Adnan Sami. Apne radio sets ki volume bada lijiye. Naya Naveela gana debut kar raha hai seedha on gana number 8. Adnan Sami ki composition, Adnan सामी की आवाज में, महिमा भारद्वाज के लिरिक्स. गाने का नाम है लिपस्टिक. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 8.

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, sabka bana.
3: Kya bana?
2: Murga, murga. Naveed wala murga.
3: Mirchi, murga.
4: हेलो।
5: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना।
4: हाँ।
5: कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
0: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
4: कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
0: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
4: मीसम नाम है।
0: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
4: 1200 रुपए।
0: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
4: हाँ जी, 1st September 1980।
0: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
4: जी
0: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
4: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
0: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
4: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
0: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
4: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
0: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर एक ही बार में पूछ लीजिए ना, आपको क्या पड़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
4: सर
6: इतना गुस्सा मत होइए सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे आपकी गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
4: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
6: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ
4: पिटोगे,
6: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को,
4: कुकड़ों को, कुकड़ों को।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
8: मरहबा दोहा, समथिंग बिग हैज जस्ट ओपन्ड एट दोहा सिटी सेंटर। योर फेवरेट फैशन ब्रांड R&B हैज ओपन्ड अ न्यूअर, बिगर एंड ग्रेटर फैशन डेस्टिनेशन एट दोहा सिटी सेंटर। सेलिब्रेट इन स्टाइल विद R&B एट द न्यूली ओपन स्टोर एंड शॉप द लेटेस्ट ट्रेंडी फैशन अक्रॉस विमेन, मेन एंड किड्स। एंड द सेलिब्रेशन डजंट स्टॉप, गेट फ्री QAR 50 गिफ्ट वाउचर ऑन शॉपिंग ऑफ QAR 200। मोर फैशन, मोर वैल्यू, मोर रीजंस टू शॉप टुडे। हेड टू द न्यूली ओपन्ड R&B स्टोर एट दोहा सिटी सेंटर, सेकंड फ्लोर टुडे। R&B, लव इट, वेयर इट।
9: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस, सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
10: घर दे कम ना रुकन गे, ओ जिम विच फटे चकांगे,
11: यू बेटर वॉच हर शाइन,
10: टारगेट पूरे करन गे, हुन बदले रूल जमाने दे,
11: यू बेटर वॉच हर शाइन।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi.

0: मिट्टर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, मिट्टर और एंड स्वरा वर्मा की आवाज। गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना दिलजीत दोसांझ का गाना डीलर, पिछले हफ्ते से 1 पोजीशन नीचे ड्रॉप करके ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। अभी के अभी कनेक्ट करो, फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम। कोई गाना शेयर करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। There are some artists जो सिर्फ गाने नहीं बनाते हैं, वो प्रॉपरली अपने गानों से ऑडियंस की अटेंशन को होल्ड करना जानते हैं। And one of such artists is Himesh Reshamya. He's back with a new song. Unke naye gaane ka naam hai Sharab. I really think Himesh could have chosen some other word for the song. Mujhe thodi problem hai. Lekin meri is problem se mujhe is gaane ke baare mein kya feel hota hai, wo change nahi hota. Interesting baat to ye hai that this song is absolutely through and through Himesh, but also sounds very new. Wahi larger than life energy hai. Kaafi dramatic sa romance hai. Ek instantly pakad mein aa jaane wala hook. But there is some twang in the song. That Rajat Nagpal effect को सुनाई देगा, जैसे कि किसी गाने को एकदम ग्लॉसी कोट कर दिया है। राणा सोतल के लिरिक्स हैं, द वीडियो फीचर्स मनुषी चिल्लर, सो द ओवरऑल पैकेज इज इनक्रेडिबल। इन फैक्ट आई वुड गिव थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर अश्काय हु मेड मी सी द म्यूजिक वीडियो, एंड देन मेरा थोड़ा सा ओपिनियन इस गाने के बारे में बदला, बिकॉज जब मैंने सिर्फ ऑडियो सुना आई थॉट यार ये गाना कैसे हिमेश के फैंस को पसंद आएगा, बट देन दैट्स व्हाट हिमेश रेशमिया डज, किसी ना किसी तरीके से हमारा अटेंशन ग्रैस्प कर लेते हैं। एंड आई स्वेयर जब मैंने म्यूजिक वीडियो के साथ ये गाना सुना तो मैंने वापस रिपीट किया और वापस म्यूजिक वीडियो देखा। चाहे आप सीरियसली सुनो, नॉस्टैल्जिक होके सुनो, आयरोनिकली सुनो, यू विल टॉक अबाउट हिमेश रेशमिया एंड हिज न्यू सॉन्ग। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। हिमेश रेशमिया का गाना, रजत नागपाल, राणा सोतल की कॉम्पोजिशन, लिरिक्स, गाने का नाम है शराब। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

हमेशा शर्मिया की आवाज में दैट वाज शराब ऑन आर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट। अश्काई और मैं बेट कर रहे हैं दैट ये गाना कब डेब्यू करेगा, अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते। मेरे को लगता है कि ये गाना नंबर 5 से 7 के बीच में डेब्यू करेगा। व्हाट डू यू थिंक? If you want to predict, at RJ Kanika पर आके मुझे बताओ। Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी। दिलजीत दोसांझ सिया का गाना, गाने का नाम है रांझा। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, रांझा is playing right next for you on गाना नंबर 5। You are listening to गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका। Enjoy। Number 5।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: घर दे कम ना रुकणगे ओ जिम विच फट्टे चकांगे

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं.
3: हाय, मैं हूँ आलिया भट्ट और आप सुन रहे हैं मिर्ची.
4: विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी.
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक.
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो.
0: Only on 89.6 मिर्ची 1. मिर्ची 1. It's hot.
5: Gana Indie Top 10
6: Kanika ke saath on Mirchi
7: Number 4.

0: मैं नौजला 21 का गाना फ्रॉम पी पॉप कल्चर 25 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बॉयफ्रेंड इज ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बातें बतानी है, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली रियली जेन्युइनली आई स्वेयर प्रॉमिस आई बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर मैं 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने आपके साथ शेयर करती हूँ। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज

गाने का नाम है तेरा चेहरा बाय द वन एंड ओनली अदनान सामी। ये गाना साल 2002 में रिलीज हुआ था, अदनान सामी की एल्बम तेरा चेहरा का ही पार्ट है। म्यूजिक खुद अदनान ने कंपोज किया था, लिरिक्स समीर के हैं एंड इस गाने की वीडियो में है रानी मुखर्जी। उस साल की सबसे सक्सेसफुल पॉप एल्बम्स में से एक थी तेरा चेहरा। आई रिमेम्बर इस एल्बम के थ्रू ही हम अदनान सामी की दुनिया से इंट्रोड्यूस हुए थे एंड कुछ इतनी मैसिव कोलैबोरेशंस थे इस एल्बम में विद रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन। बट जो ये गाने हमें आज याद हैं, ना ही ये कोलैबोरेशंस की वजह से हैं, ना ही उन गाने म्यूजिक वीडियोस की वजह से, इट्स बिकॉज ऑफ द म्यूजिक, इट्स बिकॉज ऑफ द कॉम्पोजिशन। गाना नहीं भाई, अदनान सामी पूरा माहौल बनाते थे। उनका हर गाना एक मिनी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लगता था। पियानो स्ट्रिंग्स, वो स्ट्रेच्ड आउट लॉन्गिंग इन हिज वॉइस, ऐसा लगता है कि बस गाना आपके लिए गा रहे हैं। स्पेशली द सॉन्ग तेरा चेहरा, द लिरिक्स, ये जमीन रुक जाए आसमां झुक जाए, इतना ड्रामा, उफ। एंड अदनान सामी की वॉइस जस्ट टेक्स इट टू द नेक्स्ट लेवल, चीजी एंड हाउ। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, अदनान सामी एट हिज अल्टीमेट बेस्ट, साल 2002 का गाना अदनान सामी की आवाज में, दिस इज तेरा चेहरा ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है आरजे कनिका, एंजॉय।

Man Oh Man, Tera Chehra is one of those songs that nostalgia nahi balki ek pura zamana yaad aa jata hai. Adnan Sami ki awaaz mein that was Tera Chehra on a cassette classic this week at RJ Kanak on Instagram par aao. And this is where gaane share karne ki baari aati hai. 90s या 2000s का वो कोई भी आइकॉनिक इंडी पॉप गाना जिसको आज भी आप सुन के फुल नॉस्टैल्जिक हो जाते हो, हमसे आके शेयर करो एट आरजे कनेका पर अपना रिकमेंडेशन दो. अशकाय मेरा साउंड प्रोड्यूसर और मैं, हम बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार करते हैं आपके रिकमेंडेशंस के. वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. संजू राठौड़ का बैंगल्स पिछले हफ्ते से एक पोजिशन ऊपर जंप करके दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 3. उसके बाद अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है अर्ज किया है. अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग 17 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. अर्ज किया है इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 2. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: Indie Top 10
1: Kanika ke saath on Mirchi.
0: It's hot.
2: Bollywood bol dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood bol dal.
3: Only on Mirchi. It's hot.
4: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है. What did you steal in your childhood?
5: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे. मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए. कभी आज तक बोला नहीं कि वो मैं था.
4: What a way to confess, अभय देओल. अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
2: बॉलीवुड बोल डाल.
3: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
1: only on Mirchi, it's hot.

0: Indie Top 10
1: Kanika ke saath on Mirchi.
2: Mirchi sun rahe hain aap. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJ Kanika. The show is all about the hottest pop music of the week. Now Gaana number 10 se Gaana number 2 ka safar hum pura kar chuke hain. Before I take you to the numero uno song of the week, a quick recap karte hain right from the top. इस हफ्ते गाना नंबर 10 पर था मीका और दया द रैपर का छोरी। देन आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खा का ए अजनबी ऑन गाना नंबर 9। गाना नंबर 8 पे डेब्यू किया अदनान सामी के गाने लिपस्टिक ने। दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन गाना नंबर 7। जिधर तू पीछे यातनगी ना चौपर जोगी डाब दबीना। देन मिट्टा रॉर का शीशा ऑन गाना नंबर 6। तेरे आगे पीछे लंके सुन दो ना छोरी का हर रंग। दिलजीत एंड सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 5। करण औजला 21-25 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार बॉयफ्रेंड दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। संजू राठौर का बैंग गर्ल्स ऑन गाना नंबर 3। फिर हमने सुना अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 2।
3: कायर जो थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें ये इश्क में।
2: It's time for the numero uno song of the week, yani is hafte ka gana number 1. This song is absolute treat. What a beautiful mix in this countdown. Gaane ka naam hai Bairan, ek Haryanvi song jo mujhe pata hai ki aapke Instagram ke har teesre scroll mein aap ye gana sun rahe hain. Banjare ki composition, unhi ke lyrics, unhi ki awaaz. Bairan is playing right next for you on gana number 1. You are listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy. Number 1.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: मुबारक ईद मुबारक.
2: It's hot.

0: Moon Mirchi. It's hot.
1: 89.6.
2: Mirchi Ganuki Edi. Only on Mirchi. It's hot.

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: घड़ी में राइट एंगल का इशारा हो चुका है, यानी कि रात के 9 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स राइट हियर ऑन मिर्ची।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

कई बार मुझे समझ नहीं आता कि पुरानी फिल्मों के नाम किस बेसिस पे रखे जाते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। क्योंकि कुछ नाम ऐसे हैं जिनका फिल्म के पूरे सब्जेक्ट से, पूरी फिल्म से ऐसे कोई खास तालमेल नहीं है। जैसे आपकी कसम मूवी, तो इस फिल्म में राजेश खन्ना एक शक की हस्बैंड प्ले करते हैं जो अपनी वाइफ मुमताज पे शक करते हैं और अपनी शादीशुदा लाइफ, लव लाइफ पूरी ऐसे तबाह कर लेते हैं। अभी इसमें आपकी कसम का क्या मतलब है टाइटल का, है ना? शक की पति, ऐसे ऐसा नाम ज्यादा सूट करता है इस फिल्म को। खैर जो भी है, आपकी कसम गाना बहुत अच्छा है। पुरानी जीन्स पर सुन लेते हैं, मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्च।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली.

जल भुन के खाक हो गए थे ऋषि कपूर और काफी इनसिक्योर भी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई सागर फिल्म को ऐसी बहुत बड़ी फिल्म माना जा रहा था, ऋषि कपूर डिंपल कपाड़िया के साथ वापस आ रहे हैं, बॉबी का सक्सेस रिपीट होगा, ये वो फलाना डिमका, दोनों साथ में आए, लेकिन फिल्म की सारी लाइमलाइट कमल हासन साहब ले गए। और कमल हासन साहब और डिंपल कपाड़िया का जो उसमें सॉर्ट ऑफ दोस्ती रिश्ता दिखाया गया था उसको ज्यादा पसंद किया गया। और तो और इस फिल्म के लिए डिंपल कपाड़िया को बेस्ट एक्ट्रेस का और कमल हासन को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया, विच काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड ऋषि कपूर, विच इज एक्चुअली नेचुरल ऑल्सो यार, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रोफेशन और लाइफ होता है। आप अपने साथ वालों के लिए खुश होते हो लेकिन अपने लिए भी दुखी हो जाते हो जीवन में। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000-1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं.
3: नमस्कार, दिस इज रवीना टंडन. आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक.
1: अरे वाह, ये हुई ना बात. आपको भी ईद मुबारक.
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो.
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
4: Purani jeans with Charu.

0: लिरिसिस्ट गुलशन बावरा ने पुराने टाइम के और लिरिसिस्ट के कंपैरिजन में गाने थोड़े कम लिखे हैं, लेकिन जो लिखे हैं
1: क्या लिखे हैं?
0: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक बार उनसे उनके फेवरेट गाने के बारे में पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा।
2: ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि मेरा सबसे पसंदीदा कौन सा गाना है, लेकिन मुझे एक गाने का जरा वो जो मेरे दिल पे चोट लगी थी और जो मैंने लिखा था वो मुझे काफी अच्छा लगता है, वो है चांदी की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ा। वैसे तो मेरे देश की धरती सोना उगले वो भी बहुत पॉपुलर हुआ, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी इन दोनों गानों पे मुझे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले, लेकिन वो गाना मुझे कुछ चांदी की दीवार न तोड़ी दिल को थोड़ा सा।
0: वेल ये तो हुई इनके फेवरेट गाने की बात, लेकिन यहाँ पे हम सुनेंगे एक गाना जो पता नहीं कितने लोगों का, शायद पूरी जेनरेशन का फेवरेट गाना है, क्योंकि इसके इतने कवर वर्जन बन चुके हैं, इसके रीमिक्सेस बन चुके हैं। मुझे तो ये गाना बहुत पसंद है, आई एम श्योर आपको भी पसंद है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर दी अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज दी अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
4: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
3: ओह वेल वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
2: only on Mirchi, it's hot.

0: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
0: दो दीवाने शहर में।

बचपन में ऐसे लगता था इस गाने में बोल रहे हैं कि आशियाना ढूंढते हैं, साबुदाना ढूंढते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। बड़े होके समझ में आया आबुदाना का मतलब, इस गाने में भी, रियल लाइफ में भी। खाना पीना, रोजी रोटी, और जो रोजी रोटी कमाने के चक्कर में अपने घरों से दूर रह रहे हैं, अकेले भी रह रहे हैं, वो कुछ लाइन्स से बहुत रिलेट करेंगे। ये लाइन्स शहपर रसूल नाम के शायर हैं, इन्होंने लिखी हैं। कोई साया न कोई हम साया, कोई साया न कोई हम साया, आबोदाना ये किस जगह लाया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000-1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

1981 की फिल्म कुदरत 1979 में बननी शुरू हुई थी, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से डिले होती गई, जैसे प्रोड्यूसर बीएस खन्ना, डायरेक्टर चेतन आनंद और एक्टर राजेश खन्ना के बीच में काफी डिफरेंसेस प्रॉब्लम्स आ रही थी। राजेश खन्ना बाय देन हैड स्टार्टेड थ्रोइंग अ लॉट ऑफ टैंट्रम्स। एक चीज जो सुनने में आती है कि इस फिल्म में मेन लीड में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी थे, साथ में राजकुमार, प्रिया राजवंश एंड विनोद खन्ना भी थे। और विनोद खन्ना की कुर्बानी फिल्म जब रिलीज हुई तो वो बहुत पॉपुलर हो गए। उनकी इस पॉपुलैरिटी से राजेश खन्ना थोड़े से इनसिक्योर हो गए और कुदरत फिल्म के पोस्टर्स जो लगे थे, उनके जो भी प्रमोशन हो रही थी, उससे उन्होंने विनोद खन्ना की फोटोज जो हैं वो हटवा दी। ऐसा सब सुनने में आता है, और भी बड़ा कुछ हुआ था। करते रहेंगे बातें, लेकिन अभी बातों पे ब्रेक। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची

0: Pirani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: हेलो
2: भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
1: अथॉरिटी से बनवाया था, शेख सराय से।
2: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
1: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
2: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
1: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
2: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
1: तो कोई बात नहीं होती, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
2: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
1: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
2: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
1: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
2: नहीं, मेरे को दिए आपने?
1: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
2: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया।
1: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
2: अरे उन्होंने क्या कहा था यार, उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चालान कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
1: सर मैं दलाल से बात करूंगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
2: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई।
1: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, हमको कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है, चल जाएगा, सबका बनाते हैं, कितने सालों से बना रहे हैं।
2: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
1: हाँ जी।
2: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
1: गलती होगी साहब जी,
2: गलती होगी साहब जी। कान पकड़
1: पकड़ ले,
2: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार। इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

1969 की फिल्म तुमसे अच्छा कौन है हिट हो गई थी बिकॉज इसमें हीरो हीरोइन की कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनालिटीज थी। एक तरफ जहां शम्मी कपूर साहब का पागलपन था, वहीं बबीता कपूर का पॉइज ग्रेस। वैसे बबीता कपूर ने एक्चुअली अपने देवर ससुर के साथ इस फिल्म में काम किया, अंकल इन लॉ क्या बोलेंगे। खैर रणधीर कपूर से तो उनकी शादी बाद में हुई थी। कमिंग बैक टू तुमसे अच्छा कौन है मूवी, सो शम्मी कपूर का पागलपन एंड बबीता की ग्रेस। ऐसा सुनने में आता है कि बबीता जी को बहुत ज्यादा ऐसे मेहनत करनी पड़ी थी, बहुत ज्यादा रिहर्सल करनी पड़ी थी टू मैच अप विद शम्मी कपूर की एनर्जी। फिल्म भी हिट हुई थी और इसके गाने भी पॉपुलर हुए थे, खास करके ये वाला जो हम सुनने वाले हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं.
3: हाय दिस सलमान खान और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक.
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक.
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो.
0: Only on 89.6 मिर्ची 1. It's hot.
4: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: भाई वैसे तो अनुराधा पौडवाल 90s की प्रोमिनेंट सिंगर रही हैं, लेकिन इनकी शुरुआत 70s में ही हो गई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक इंटरव्यू में इस बिगनिंग के बारे में सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: मैंने शुरू किया 1973 से फिल्म अभिमान से। अभिमान का उस वक्त बैकग्राउंड चल रहा था एंड बरमिंदा दा वांटेड अ श्लोक, सो ही टोल्ड माय हस्बैंड अरुण जी जो ही वाज असिस्टेंट डायरेक्टर टू बरमिंदा कि मुझे कोई संस्कृत का श्लोक चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ये ट्यून किया है तो इसे थोड़ा घर के टेप रिकॉर्डर के ऊपर तुम थोड़ा गा दो। जैसे वो लेके गए बरमिंदा के पास तो उन्होंने पूछा है किसने गाया है, देन ही सेड कि व्हाई डोंट वी रिकॉर्ड दिस, इन्हीं की आवाज में हम श्लोक रिकॉर्ड करते। सो दैट टर्नड आउट टू बी मतलब प्योर डेस्टिनी एंड That turned out to be the beginning of my career.
0: और actually 70s में उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गाने गाए, कुछ बहुत हिट फिल्मों में भी गाने गाए, लेकिन उनके गाए गाने उतने हिट नहीं हुए। उनके करियर का पहला हिट गाना आया 80s में। अजी बहन और भाइयों, उस साल का बेहद लोकप्रिय गीत जो 1984 की गीत माला में पायदान नंबर एक पर था, फिल्म का नाम हीरो, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने इसे सुरों से सजाया, आनंद बख्शी के बोल और आवाज मनहर और अनुराधा की। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स ऑन मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
4: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
5: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
5: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई।
4: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
5: मैं मुझे नहीं पता।
4: हम साथ
5: कौन
4: साथ
5: सी है? ओ हाँ, हम साथ साथ है। और
4: नाना पाटेकर, कटरीना कैफ,
5: ये भाई बहन थे। वेलकम।
3: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

एक थप्पड़ की गूंज सुनी थी अमिताभ बच्चन साहब ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये फिल्म थी 1978 की कस्मे वादे, जिसमें अमिताभ बच्चन और राखी का एक सीन था। सीन में ऐसा कुछ होता है कि राखी जी को अमिताभ बच्चन को थप्पड़ मारना होता है, तो अमिताभ बच्चन थोड़ा कंफ्यूज हो गए। उनको ऐसा लगा कुछ टाइमिंग गड़बड़ हो गया, जैसे उनको लगा कि तीन डायलॉग के बाद थप्पड़ पड़ेगा, लेकिन वो थप्पड़ दो डायलॉग के बाद ही पड़ गया। तो राखी जी ने एक बार एक इंटरव्यू में ऐसा शेयर किया था कि वो जो एक्सप्रेशन है उस फिल्म में थप्पड़ पड़ने के बाद वाला, अमिताभ का जो एक्सप्रेशन है एकदम हैरानी वाला, वो रियल है, बिकॉज उस टाइम वो थप्पड़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: मुबारक ईद मुबारक.
2: It's hot.

0: सेवैया खाइए और सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची।
1: ओ चलती कुड़ी, ओ चलती कुड़ी।

0: भाई ये बड़े बड़े सिंगर्स जो इतने बढ़िया बढ़िया गाने गाते थे, इनको कितनी मुश्किल आती होगी कई बार सोचते हुए कि कौन सा गाना इनका फेवरेट है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। हो सकता है कोई ऐसा गाना हो जिससे उन्होंने पर्सनली रिलेट किया हो, जो उनका फेवरेट बन गया हो। जैसे लता मंगेशकर जी ने कई इंटरव्यूज में अपने फेवरेट गाने शेयर किए हैं, आएगा आने वाला महल फिल्म से, या प्यार किया तो डरना क्या मुगले आजम से, लग जा गले वो कौन थी फिल्म का। और एक और उनका फेवरेट गाना था जो वो अपने हर लाइव शो में, म्यूजिक टूर में गाती थी, अनामिका फिल्म का ये गाना। सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: हाँ।

0: जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
3: Hi everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: This is मिर्ची and it's hot। आप सबको ईद मुबारक।
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
5: Only on 89.6 मिर्ची 1। मिर्ची 1, it's hot।
6: हेलो
7: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
6: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
7: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे वो उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
6: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
7: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
6: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, तो है। मकान है, लाल रंग पेंट हुआ है।
7: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आप कहाँ खड़े हो पहले भी बताओ ना मेरे को।
6: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
7: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
6: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
7: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
6: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
7: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया फोन।
6: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
7: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
6: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर घर पे नहीं है, वो क्या मैं घर पे नहीं हूँ।
7: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है, मिलो यार उनसे, समझ लो, जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है, मैं आपको पहले रहा हूँ।
6: मैं बाद में मिलूंगा आपसे, यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
7: किसकी डेथ हो गई सर?
6: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
7: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
6: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई, अचानक ऐसे हो गया। रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रह रहे हो?
7: मैं कहाँ रह रहा हूँ,
6: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
7: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
6: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस नहीं आई भाई, क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, परेशान हूँ मैं।
7: आशीष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
6: यार।
7: थैंक यू।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
8: घर दे कम ना रुकणगे, ओ जिम विच फट्टे चकांगे, यू बेटर वॉच हर।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

ये तो हम जानते हैं कि देवानंद साहब अक्सर नए टैलेंट को फिल्मों में चांस देते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। पर क्या आप जानते हैं कि इन टैलेंट में शत्रुघ्न सिन्हा साहब भी शामिल हैं? शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने अपनी लाइफ में जो पहला एक्टिंग रोल साइन किया था वो देवानंद साहब की फिल्म प्रेम पुजारी के लिए था। उस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा दूसरे देश के मिलिट्री ऑफिसर का रोल निभाते हैं और शत्रुघ्न सिन्हा साहब के काम से इम्प्रेस होकर देवानंद ने फिर अपनी एक और फिल्म गैम्बलर में भी उनको एक अच्छा खासा रोल दिया था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजे अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
3: Hi everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: This is Mirchi and it's hot.
3: आप सबको ईद मुबारक।
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
0: Only on 89.6 Mirchi 1.
5: Mirchi 1.
0: It's hot.
6: Purani jeans with Charu, only on

0: विनोद खन्ना साहब रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मतलब उनके फादर वेल टू डू अफ्लुएंट बिजनेसमैन थे और विनोद खन्ना साहब एक रिबेल टाइप के थे। अपनी टीनेजर में बहुत पार्टी वार्टी करते थे और ऐसी एक पार्टी में उनको सुनील दत्त साहब ने देखा और फिल्म ऑफर की। लेकिन ये बात जब उन्होंने अपने घर में बताई तो घर से तो मना हो गई। सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में विनोद खन्ना साहब ने क्या शेयर किया था।
1: मैंने अपने फादर से ये कहा था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मैं उस वक्त 18 साल का था, 19 साल का। बिसाइड्स बीइंग थ्रोन आउट ऑफ द हाउस, बाकी सब इवन मेरे साथ वो चीजें हुई, बट वो एक रिबेलियन हो गई थी उस वक्त कि भाई मैं ये बनना चाहता हूँ, मुझे करने दीजिए। माय मदर वाज ऑलवेज सपोर्टिव एंड माय फादर हैड अ लिटिल हेसिटेशन बिकॉज़ ही वाज वरीड। आई केम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, ही वाज ऑल प्रिपेयर्ड टू यू नो पुट मी इनटू बिजनेस बिकॉज़ चेंज हिज एटीट्यूड लेटर व्हेन ही सॉ दैट आई यू नो दैट आई गॉट द सक्सेस दैट आई एंड आई डिजर्व टू बी वेयर आई वाज। ही वाज वेरी नाइस टू मी देन, बट इनिशियली तो उस वक्त तो हर कोई पेरेंट कोई किसी को जाने नहीं देता था फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री वाज द बिग बैड वर्ल्ड।
0: और आप सोचिए इस बिग बैड वर्ल्ड में उनकी शुरुआत विलन वाले रोल से हुई तो मम्मी पापा कितना ही घबरा गए होंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
4: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

1965 में जब शमी कपूर जी की वाइफ गीता बाली जी की डेथ हो गई, तो उसके बाद शमी कपूर जब वापस काम पर आए तो उन्होंने पता है पहली चीज क्या शूट की थी? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो फिल्म थी तीसरी मंजिल और वो शूटिंग थी उस गाने की जिसे मरते दम तक शमी कपूर जी अपनी वाइफ गीता बाली जी से कनेक्ट करते रहे, रिलेट करते रहे। ये गाना था तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये जमीन थम गया आसमान। सुन लेते हैं ये गाना पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट

0: स्पाइसी बना।
1: हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट

चाल बुरा करते हाल, पलक फड़के आए कि दिल धड़के, उमर की उठा कड़कती कमान, कातिल अदा जालिम हया।